0: వార్తలను వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాత్ మే ప్రియాంక అరోడా. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे. दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी. भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे. जापान में एशियाई खेलों में रोशिबेना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता. रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए. और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे. इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे. एक रिपोर्ट.
2: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है. सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है. सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गाँवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं. इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं. यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है. वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं. यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी. समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी.
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं. उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है. इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है. समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है. इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया.
3: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है. प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है. शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है.
4: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी. जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है. मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ.
3: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है.
5: बहुत अच्छी बात जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया. जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं.
3: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है. रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला.
1: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल

0: की बैठक में लिया गया।
1: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रूपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
2: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ

0: साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रुशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रुशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रुशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रुशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ఇలానే మీకు నచ్చిన గీతాలను వినాలి అనుకుంటే మీరు చేయాల్సిందల్లా 6304767436 అనేటువంటి వాట్సాప్ నెంబర్కి మీకు నచ్చిన సాంగ్ డీటెయిల్స్తో పాటు మీ డీటెయిల్స్ని కూడా టైప్ చేసి పంపించేసేయండి. మీకు నచ్చిన మీ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ అన్నింటినీ వినండి పాటల పల్లకి కార్యక్రమంలో. ఇప్పుడు మన ఎఫ్ఎం రెయిన్బోలో మరికొద్ది క్షణాల్లో జపాన్లో జరుగుతున్న 2026 ఆసియా క్రీడల 20వ ఎడిషన్ తాజా సమాచారాన్ని వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారంగా.
1: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచీ నగోయా.
2: Very warm welcome to all the listeners of Akashvani. Dosto, main hu Sakshi Mandwal. Mere saath is waqt maujood hain Shabab Ahmed aur hum lekar aa gaye aapke liye subah 9:30 baje ongoing Asian Games 2026 ki live updates. To chaliye shuru karte hain ki aaj ke din ki shuruaat Bharat ke liye kaisi rahi. Sabse pehle the best news of the day that came in early in the morning was from the world of wushu. Roshibena Devi ne women's 60 kg final mein Bharat ko aur apne liye silver medal jeet liya. Ji ha, she completed a hat-trick of medals in the Asian Games. आपको याद दिला दे कि रोशिबेना देवी के नाम 2018 में भी ब्रॉन्ज मेडल रह चुका है, 2022 में वो सिल्वर पदक से भी सम्मानित करी जा चुकी है और उसके साथ अब 2026 में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया. She took the silver medal in the women's Sanda 60 kg category after a hard-fought battle against China's Xiao Zhang. The best news of the day, Shabab ji.
3: Yeah, बिल्कुल, आज का दिन ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत सारे भारतीय खेल प्रेमियों के उठने से पहले, जागने से पहले एक पदक आ गया था और ये पदक दिलाया था, चूंकि ज्यादा प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ी. दिन की बोहनी कराई सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स एकलस में कांस्य पदक के साथ ये बोहनी कराई. इस वर्ग का जो स्वर्ण पदक चीन और रजत उज्बेकिस्तान के हिस्से में गया. सतनाम और सलमान 500, 1000 और 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर चल रहे थे कि इस दौरान वो चीनी जोड़ी से आधे सेकंड से मात्र पीछे रह गए. वो काफी निराशाजनक रहा था वो सीन, लेकिन अंतिम चरण में आखिरकार पिछड़ गए. वो जो आधा मिनट का जो समय था वहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद आज कुछ हो जाएगा, लेकिन अंतिम जो चरण था उसमें ये पिछड़ गए.
2: सही बोला आपने शबाब. और हम आगे बढ़ेंगे एथलेटिक्स की दुनिया से भी आपके लिए कुछ अपडेट्स लेकर आ रहे. हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स में अनामिका अनीश फिनिश्ड फिफ्थ इन लास्ट इन अ हीट विद द टाइम ऑफ 14.80 सेकंड्स अर्निंग 868 पॉइंट्स. जापान की यूरी तनाका टॉप्ड द हीट क्लॉकिंग 13.99 सेकंड्स टू कलेक्ट 980 पॉइंट्स. वहीं मिक्स 4x400 मीटर रिले हीट 2 में मनुटी हैज पुट इंडिया इन द थर्ड बिफोर एम आर पूवामंबा रैन अ ब्रिलियंट सेकंड लेग टू टेक द लीड. जयकुमार मेंटेन्ड advantage despite China and UAE closing in, and after slightly slow exchange anchor Kiran Pahal held the front position into the final lap. China made a late surge to pip India at the line, but the Indian team safely clinched the second place to book their spot in the final with a timing of 13 minutes 16.23 seconds. Aur women's heptathlon high jump pe bhi Anamika Anish ne finally ek strong recovery karke in high jump cleared a best height of 1.74 meters to finish second in the event and gathered 903 points. Ji ha, Pooja cleared 1.71 meters to finish joint fourth, adding 867 points to her tally. The performance gives both the Indian athletes a significant boost in their overall standings because ab Anamika hai 6th place par 1771 points ke saath aur Pooja hai 9th place par 1761 points ke saath. Shabab,
3: yeah, bilkul. Udo Megha Pradeep ki baat kare to mahila कैनो सिंगल्स में थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है. 200 मीटर के सेमीफाइनल में वो चौथे स्थान पर रही हैं मेघा प्रदीप. सेमीफाइनल के शीर्ष तीन खिलाड़ी ही फाइनल में पहुंचती हैं, इसलिए मेघा का फाइनल में पहुंचने का जो प्रयास था, अच्छा प्रयास उन्होंने किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया.
2: राइट. और आपको स्विमिंग की दुनिया से भी थोड़े अपडेट्स देने वाले हैं, पर वहां पे ज्यादा कुछ हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि स्विमिंग में हमने देखा कि मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स के अंदर भारत के बेनेडिक्ट बेनेस्टन फिनिश्ड फिफ्थ इन द हीट 5 ऑफ मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट, फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल बट इज स्टिल प्लेस्ड इन द रिजर्व्स. ही फिनिश्ड 12th ओवरऑल. वहीं मेंस 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले हीट्स में इंडिया भारत की तरफ से बेनेडिक्ट अनीश सुनील आकाश माने और गितेश शाह वर एलिमिनेटेड इन द हीट्स आफ्टर फिनिशिंग लास्ट इन देयर सिक्स टीम रेस. मेंस 800 मीटर फ्रीस्टाइल में भी हमने देखा आर्यन नेहरा फिनिश थर्ड विद द टाइमिंग ऑफ 8 मिनट्स 2.52 seconds, touching the wall 5.13 seconds behind Vietnam's Nguyen Hoi Hang. Aur iske saath hi Nehra did not leave this event with a podium placement also. Nirashajanak khabar swimming ki duniya se, Shabab?
3: हाँ, उधर अगर निशानेबाजी की बात करें तो बहुत अच्छी खबर उसमें नहीं है, क्योंकि कमलजीत ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल जो क्वालिफिकेशन था उसमें 580 अंक ही प्राप्त करे और उसके साथ सातवां स्थान उन्होंने हासिल किया। हालांकि उन्होंने फाइनल में इसके जगह जरूर बनाई। वहीं आकाश भारद्वाज 579 अंकों के साथ 90 स्थान पर है और केवल एक अंक से फाइनल में जगह बनाने से चूक गए।
2: जी, अपडेट्स तो हम लगातार आपको हर घंटे लाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस अपडेट से आपसे अभी के लिए विदा ले, आपको बता दें कि मेडल टैली में भारत की अभी स्टैंडिंग और कितने मेडल्स भारत आज अभी कमा चुका है। मेडल टैली में हम बात करेंगे तो भारत की पोजीशन है 14th। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त है 14 मेडल, एक गोल्ड, जो कि क्रिकेट की दुनिया से महिला क्रिकेट टीम ने हमें दिलवाया था।

सिल्वर आ चुके हैं जिसमें से 4 शूटिंग में आए, 1 वेटलिफ्टिंग में, 1 वुशू में। 7 ब्रॉन्ज मेडल्स आ चुके हैं जिसमें से 3 शूटिंग में है, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट में, 1 सॉफ्ट टेनिस में है, जो कल जय मीना लेके आए थे विद हिस्ट्री।

0: మరికొద్ది క్షణాలలో జపాన్ లో జరుగుతున్న 2026 ఆసియా క్రీడల 20వ ఎడిషన్ తాజా సమాచారాన్ని వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచీ నగోయా.
2: नमस्कार, एशियन गेम्स के हलचल की ताजा अपडेट्स के साथ मैं हूं शबाब अनवर और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल. आज सुबह बहुत अच्छी हुई थी भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो, जिस प्रकार से रोशबीना देवी ने वुशु में सिल्वर मेडल जिलाया और उसके बाद सतनाम और सलमान की जोड़ी ने हमें रोइंग में मेडल दिलाया, लेकिन उसके बाद जो एक घंटा गुजरा है वो सन्नाटा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में. कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का नहीं रहा है. काफी ज्यादा उम्मीदें निशानेबाजी में भारत को हर इस तरह के मल्टीपल इवेंट में रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं है. निशानेबाजी से हम शुरुआत कर लेते हैं. अगर बात करें तो थोड़ी सी राहत इस बात की है कि

0: अनंत जीत सिंह नारुका और पनिराज धालीवाल की भारतीय जोड़ी ने स्किट मिक्स टीम के फाइनल में जरूर जगह बनाई है। फाइनल में भारत का सामना बहुत ही मजबूत दक्षिण कोरिया, कतर और चीन से होने वाला है। भारत ने 138वें कुल में स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। भारतीय जोड़ी ने तीन सीरीज में 44, 47 और 47 का स्कोर किया था। उधर भारत के पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम इवेंट में काफी निराश किया है और ये टीम चौथे स्थान पर रही है। अगर कहा जाए तो देलदारिंग उचुकांकर ने 568 अंक बनाए और व्यक्तिगत स्पर्धा में 35वें स्थान पर है और वो जो उनका जो लचर प्रदर्शन था उसके कारण ही भारत जो था वो तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया।
1: जी एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू गिव यू क्विक अपडेट्स ऑन टेबल टेनिस, जहां पर भारत ने ईरान को वुमेन्स डबल्स राउंड टू में हरा दिया। इंडियन टीम वाज रिप्रेजेंटेड बाय दिया चिटले एंड यशस्वनी घोरपड़े, हु सिक्योर्ड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 3-0 विन ओवर ईरान विद 11-2, 11-2, 11-4। एंड देन वुमेन्स डबल्स राउंड टू के अंदर भारत की एक और महिला जोड़ी उतरी, दिस टाइम फेसिंग अगेंस्ट देयर मंगोलियन ओपोनेंट्स, जहां पर हमने देखा कि भारत ने एक बार फिर से बड़ी आसानी से मंगोलिया को भी 3-0 से शिकस्त दे दी। श्री जाकुला and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 11-5, 11-4, 12-10 victory over bowler Erdin Botmuk and Sanja from Mongolia. While men's singles round 1 May, Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shin. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline, which read like 11-9, 14-12, 11-7, 11-4. So early start right now for table tennis, but definitely small little smiles, क्योंकि यहाँ पर भारत को at least शुरुआती जीत मिलनी शुरू हो गई है। शबाब
0: जी, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और जैसे जैसे ये क्रम आगे बढ़ेगा हम इसकी जानकारी देते रहेंगे। बहुत सारे खेल आज नए स्पर्धाएं भी शुरू हुई हैं, उसमें एक फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी भी है और उसमें महिला वर्ग में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि तलवारबाजी स्पर्धा में भारत की भवानी देवी पूल 4 में चौथे और श्रेया गुप्ता पूल 2 में दूसरे स्थान पर रही हैं। ग्रुप स्टेज के बाद दोनों ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है, आगे बढ़ने की थोड़ी गुंजाइश इस मुकाबले में है।
1: जी और अब स्क्वाश से भी आपको दे देते हैं अपडेट, जहां ऑल इंडिया क्लैश इन द मिक्स डबल्स राउंड ऑफ 16 हुआ था, जिसमें जोशना चिनप्पा एंड विल्वन सेंथिल कुमार सिक्योर्ड हार्ड फॉट 2-0 विक्ट्री ओवर फेलो इंडियंस सूरज चंद एंड शमीना रियाज टू एडवांस टू द मिक्स quarterfinals. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level it at 9-9 and earn a game point. However, Joshna Chinnappa's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favor.
0: थोड़ा क्रिकेट की बात फिर से शुरू हो गई है एशियन गेम्स से। आपको बताइए कि महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता, अपने स्वर्ण पदक की रक्षा की। मेंस वर्ग का मुकाबला भी आज से शुरू हो गया है और पहला मुकाबला था जापान यानी जो मेजबान टीम है और अफगानिस्तान ने, तो वहां से ये खबर आ रही है कि इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने मेजबान जापान को 48 रनों से हरा दिया है। और आपको तो याद होगा कि भारत को क्वार्टर फाइनल में बाई मिला है मेंस टीम में। 28 सितंबर का इंतजार कीजिए, एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल क्रिकेट की शुरुआत पुरुष वर्ग में भी हो गई
1: जी, और कबड्डी ने भी आज के दिन की शुरुआत कर ली है, जिसमें इंडिया इज अप अगेंस्ट चाइनीज तिपा इन द मेंस ग्रुप ए मैच। और फर्स्ट हाफ भारत के नाम रहा बहुत ही कन्विंसिंगली और कमांडिंग तरीके से, जहां भारत ने 23-11 से फर्स्ट हाफ को अपने नाम किया। और दूसरा हाफ दोस्तों अभी जारी है, बरकरार है, भारत इस वक्त उसमें भी लीड में है 5 अंकों से, यानी भारत के पास अभी हुए हैं 12 अंक और चाइनीज तिपाए अपने उसमें सिर्फ 7 अंक ही डाल पाए हैं इन द सेकेंड हाफ। द मैच इज स्टिल ऑन गोइंग, इंडिया स्टैंड्स एट अ टोटल ऑफ 35 पॉइंट्स व्हाइल चाइनीज तिपाए स्टैंड्स एट अ टोटल ऑफ 18 पॉइंट्स सो फार। सो ही इज होपिंग दैट इंडिया शुड बी एबल टू ऑल्सो क्रूज इजी इन दिस गेम। और आपको ये भी बता दें कि शूटिंग की दुनिया में एक निराशाजनक खबर आपको ये दे सकते हैं कि बोथ द इंडियन मेन्स एंड वुमेन्स पिस्टल शूटर्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंड suspended from the Asian Games with no medal in either individual or team events so far. जैसे आपको शबाब बता भी रहे थे, लेकिन एक overall अगर आपको picture दे तो पिस्टल ने अभी तक 7 medals produce किए in the last 2 Asias, 3 gold, 2 silver, 2 bronze. और आज के लिए या फिर आगे भी मैं कहूंगी दोस्तों, अभी mixed doubles के events बाकी हैं. तो ये थे अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए जो शबाब और मैं साक्षी आपके लिए लेकर आ रहे थे. दोबारा एक बार हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आएंगे सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी के माध्यम से.

0: साथ इस वक्त मौजूद हैं दोस्तों शबाब अनवर और हम लेकर आ गए हैं सुबह के 11:30 बजे अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स इन द लास्ट वन आवर। और सबसे बड़ी हार्ट ब्रेकिंग खबर जो आई है पिछले एक घंटे में वो रही बॉक्सिंग की दुनिया से, क्योंकि सुमित कुंदू का जो 70 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 का बाउट था वेर ही वॉज अप अगेंस्ट अली कासिम हमदन अल सरे, वेल दैट उसमें बिकॉज ऑफ इंजरी ही हैड टू विथड्रॉ। यस, ही कुडंट कैरी ऑन एंड एज अ रिजल्ट दिस हैज बीन द बिगेस्ट हार्ट ब्रेकिंग न्यूज दैट हैज कम इन टू प्ले फॉर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के काम से बिकॉज उनको फॉरफिट करना पड़ा अपना थर्ड राउंड। बता दें आपको कि सुमित लैंडेड बिग पंचेज अर्ली इन द बाउट एंड मेंटेन्ड अ क्लियर डोमिनेंस ओवर द इराकी प्यूजलिस्ट। द इंडियन बॉक्सर टुक द फर्स्ट राउंड 5-0 बिफोर कासिम मेड अ बिट ऑफ अ कमबैक। हाउएवर द सेकंड राउंड वंस अगेन वेंट टू सुमित विद अ स्प्लिट डिसीजन ऑफ 3-2, बट डिजास्टर struck just seconds into the third round as Sumit suffered a severe knee injury, slipping and hobbling before the medical officer stepped in to stop the bout. Commentators suspected an ACL injury, bringing a heartbreakingly abrupt end to his campaign. And because of this, Iraq's Ali Al Sarai advanced to the quarterfinals. And Shabab, kehna padega ki ye jo ghatna unke saath hui hai, wo definitely heartbreaking to hai.
1: Yeah, bahut hi nirashajanak hai. क्योंकि काफी उनसे उम्मीदें भी थी और स्वयं भी

0: आप ही आत्मविश्वास से लबरेज थे अगर मुकाबले से बॉक्स से पहले की बात करें तो। लेकिन उधर हमें अगर कबड्डी की बात करें तो जहां जलवा भारत का बरकरार है, लगातार चौथी जीत दर्ज की है भारत ने, चीनी ताइपे को 37-21 से हराया है और जैसा कि हमने बताया कि लगातार चौथी जीत के साथ लगभग सभी ग्रुप मैच जीत कर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है पुरुष कबड्डी में।
1: Right, and the other big news that we'll now bring to you, or rather should we move on towards, is from the world of squash, जहाँ पर हमने देखा कि Anahat Singh won and wrapped up a contest with an 11-7 victory in the third game, and thereby in the women's singles round of 16 clash was able to defeat her opponent 3-0 to qualify for the quarterfinals. It was a clean victory that came her way, 11-4, 11-5, 11-7. Good news from the world of squash. और उससे पहले भी अगर हम squash के कुछ और events के ऊपर आज एक नजर डालें तो All Indian clash in the mixed doubles round of 16 भी हमने आज देखा, जिस में जोशना चिनप्पा एंड विलवन सेंथिल कुमार सिक्योर्ड अ हार्ड फॉट 2-0 विक्ट्री ओवर फेलो इंडियंस सूरज चंद एंड शमीना रियाज टू एडवांस टू द मिक्स्ड डबल्स क्वार्टर फाइनल्स। एंड मेन्स सिंगल्स राउंड वन में भी मनुष शाह एंजॉयड अ कंफर्टेबल स्टार्ट टू हिज मेन्स सिंगल्स कैंपेन विद अ विन ओवर मलेशियाज वोंग क्वी शेन ऑफ मलेशिया 11-9, 14-12, 11-7, 11-4. सो कन्विंसिंग कंफर्टेबल कमांडिंग विक्ट्रीज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश स्पेशली फॉर द इंडियंस। और आज इसी इवेंट के अंदर और भी आप बहुत सारे इवेंट्स देखने वाले, यानी स्क्वाश के अंदर जहां पर आप देखेंगे, अभी हमने देखा अनहत सिंह की वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 का क्लैश, उसके बाद अभय सिंह, वीर चौटरानी, तन्वी खन्ना विल आल्सो बी हैविंग देयर इवेंट्स टुडे।
0: होगा तलवारबाजी की बात करें तो सुबह 10:30 हमने एक अच्छी खबर सुनाई थी, लेकिन अभी जो खबर है वो अच्छी नहीं है क्योंकि भवानी देवी, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी राउंड ऑफ 16 में, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। हम श्रोताओं को बता दें कि भारत के सीए भवानी देवी महिला साबरे के राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गई हैं। उन्हें 2026 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट चीन के राव शुंगई ने 15-5 से पराजित कर दिया है।
1: Right, and the big news that came in today early in the morning was from the world of wushu, जहां रोशि बिना देवी ने women 60 किलोग्राम फाइनल के अंदर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया और भारत का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया। हैट्रिक ऑफ मेडल्स फॉर हर इन द एशियन गेम्स, बिकॉज 2018 के एशियन गेम्स में उनको ब्रॉन्ज से नवाजा गया था, 2022 के एशियन गेम्स में उनको सिल्वर से नवाजा गया था, और एक बार फिर से 2026 में उन्होंने सिल्वर पदक अपने नाम कर लिया। गोज टू शो हर कंप्लीट डोमिनेंस इन वुशु इन द 60 किलोग्राम कैटेगरी, विच शी obviously earned after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. And Shabab, हमें पता है, it's never going to be easy to defeat a Chinese opponent in any sport, but we have Roshi Bina Devi somehow breaking those barriers and every time proving every person wrong that we can go ahead and defeat China or Japan also.
0: देखिए individual round में अगर देखा जाए तो अब तक जितने भी athlete ने जो कारनामा देखा है उनमें वो सबसे आगे हैं, जिस तरह का उनका सफर रहा है और जिन परिस्थितियों में उन्होंने कई खेल छोड़े और सेल्फ डिफेंस के लिए जो उन्होंने जो अपनाया एक घटना घटने के बाद उनके बाद उसमें लेकर के जो आगे बढ़ी वो काबिले तारीफ है।
1: राइट, एंड नाउ अ क्विक अपडेट आल्सो कमिंग इन फ्रॉम शूटिंग, जहां आपको बता दें कि एक अच्छी खबर या खुशखबरी की हम उम्मीद कर सकते हैं शूटिंग में, वो है मिक्स टीम स्केट के फाइनल्स के थ्रू, बिकॉज इसके अंदर आपको बता दें द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ अनंतजीत सिंह नरुका और परनाज धलेवाल हैव मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ द मिक्स स्केट शूटिंग कॉम्पिटिशन, एंड दे हैड फिनिश्ड फोर्थ इन द क्वालिफिकेशन राउंड गेटिंग 138 आउट ऑफ 150 पॉइंट्स एज पर द ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स। ऑल्सो कतर, साउथ कोरिया और चाइना उनके ऊपर हैं ये तीनों देश, चौथे पर उन्होंने फिनिश किया था, तो दे आर गोइंग टू नाउ बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द मिक्स्ड स्कीट टीम फाइनल्स। ये इवेंट 11:15 सुबह शुरू हो चुका है, इसके बारे में आपको अपडेट लेके आएंगे अगले एक घंटे के बाद, यानी दोपहर 12:30 आपको इसमें बताएंगे क्या हुआ। फिलहाल के लिए शबाब और मुझे यानी साक्षी को दीजिए इजाजत, वी विल कैच यू बैक अगेन विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स इन द 12:30 अपडेट। थैंक यू सो मच, गुड बाय।
2: ఇంతవరకు జపాన్లో జరుగుతున్న 2026 ఆసియా క్రీడల 20వ ఎడిషన్ తాజా సమాచారాన్ని విన్నారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి. తిరిగి మరింత సమాచారాన్ని 1:30 వినవచ్చు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో.

0: 12 గంటలకు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి హిందీలో వార్తలను వింటారు. వెనువెంటనే 12:05 ఆంగ్లంలో వార్తలను వింటారు.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే జాగృతి శర్మ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए. श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे. हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा. कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे.
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए. भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई. इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए. संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है. डॉ एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की

0: की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी। इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. They said they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode, which will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External

0: स्कल्स के जो फाइनल मुकाबले थे उसमें पांचवें स्थान पर रही। हालांकि प्रयास बहुत अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन सफलता ज्यादा मिली नहीं। चीन ने इस मुकाबले का गोल्ड मेडल जीता, इंडोनेशिया दूसरे, उज्बेकिस्तान तीसरे और जापान चौथे स्थान पर आए।
1: जी, और स्विमिंग में भी नॉट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज टू गिव एट दिस आवर, बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द डे वी विटनेस्ड एक्शन इन मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स, मेंस 4x200 फ्रीस्टाइल रिले हीट्स एंड मेंस 800 मीटर फ्रीस्टाइल। इन तीनों इवेंट्स में एक एक करके आपको बताते हैं। मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स में भारत के रथ बेनेडिक्टन बेनिस्टन फिनिश्ड फिफ्थ इन द हीट 5 ऑफ मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट, फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल डायरेक्टली बट स्टिल प्लेस्ड इन द रिजर्व्स, ही फिनिश्ड 12th ओवरऑल। मेंस 4x100 फ्रीस्टाइल रिले हीट्स के अंदर बेनेडिक्शन बेनिस्टन, अनीश सुनील, आकाश माने और गितेश शाह वो एलिमिनेटेड इन द हीट्स आफ्टर फिनिशिंग लास्ट इन देयर सिक्स टीम रेस इवेंट। मेंस 800 मीटर फ्रीस्टाइल में भी हमने देखा आर्यन नेहरा फिनिश थर्ड विद द टाइमिंग ऑफ 8:02.52, टचिंग द वॉल 5.13 बिहाइंड वियतनाम्स ग्युइन होय हवांग। एज अ रिजल्ट आर्यन नेहरा डिड नॉट लीव दिस इवेंट विद अ पोडियम प्लेसमेंट ऑल्सो।
0: क्या बिल्कुल, और स्क्वैश में भी आज का दिन अच्छा रहा है। आज से मुकाबले भी शुरू हुए, तन्वी खन्ना ने स्क्वैश के विमेन सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, उन्होंने सिंगापुर की वेई रहन को 3-1 से हराया। और मेन सिंगल्स में अभय सिंह श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बनाई। और चोत्रानी ने अगर देखा जाए तो मलेशिया के संजय जीवा को 2-1 से हराया, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से 18 साल की अनाहत सिंह ने स्क्वैश के महिला सिंगल्स में जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया था और उन्होंने सिंगापुर की ओ यी योंग वाई इयान को 3-0 से हराया था। तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत ने मुकाबला 11-4, 11-5, 11-7 से जीता था। तो आज जो कुछ अच्छे मुकाबले भारत के लिए हुए हैं उसमें स्क्वैश भी शामिल है।
1: ऑफ कोर्स, इनफैक्ट शायद इकलौता ऐसा कह सकते हैं लेटर पार्ट ऑफ द डे में स्क्वैश हमें गुड न्यूज लेके आया है, बिकॉज वुशू से भी हमें गुड न्यूज मिली ही मिली है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट रोशिबिना देवी गॉट अस द कोवेटेड सिल्वर इन द 60 किलोग्राम कैटेगरी इन वुशू एंड थेरबाय शी वाज एबल टू स्कोर अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स इन 3 एशियन गेम्स 2018, 2022 और 2026। तीनों बार उन्होंने मेडल्स अपने नाम किए। अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स कमिंग फॉर रोशिबिना देवी। एंड आई थिंक शबाब, वी आल्सो हैव सम न्यूज़ टू शेयर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग फॉर आवर लिसनर्स टुडे।
0: या बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर थोड़ी सी परेशानी हुई, भवानी देवी ने थोड़ा सा निराश किया, राउंड ऑफ 16 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बहुत ही अफसोसनाक ये खबर रही है, क्योंकि उन्होंने 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट को उन्होंने हराया था और उसके बाद से मुकाबले से बाहर होना थोड़ा चिंता की बात है।
1: राइट, वील कैरी ऑन विद दीज अपडेट्स ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ आपको ये भी बता दें कि आज दिन की शुरुआत भी मेडल्स के साथ ही हमारे लिए हुई थी, बट वील बी कमिंग विद दैट, जिसकी वजह से भारत की पोजीशन अगर मेडल टेबल पर देखें तो 14th पोजीशन पर अब बन गई है। 15 मेडल्स कुल मिला के भारत को मिले हैं, जिसमें से एक है गोल्ड क्रिकेट की दुनिया से, महिला क्रिकेट ने दिलवाया, 6 सिल्वर है जिसमें 4 शूटिंग, 8 वेट लिफ्टिंग और 1 वुशू से आया है, और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स, 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन और 1 रोइंग, मेकिंग इट अ टोटल of 15 medals. Hope still resting a lot on the Indian athletes. और इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय एथलीट्स और प्लेयर्स भारत का नाम और रोशन करवाए और मेडल टेबल में धीमे धीमे करके भारत और ऊपर आए। On that note, right now it's Shabab and me, Sakshi, saying goodbye to our listeners. We'll join back at 3:30 p.m. with all the live updates of the ongoing Asian Games 2026.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: 21 victory over Chinese Taipei in their final Group A fixture at the Asian Games 2026 in Japan. India dominated from the outset, taking a commanding 23-11 lead at halftime and maintaining their advantage in the second half, which they won 14-10. The victory was India's fourth consecutive win in the group stage. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Parmo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storm into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।

0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
1: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
2: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
4: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालु के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र

0: सभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
1: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
3: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है।
1: अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं।
0: और मैं आपका मित्र अजीत आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
2: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
0: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: राजानगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: तो श्रोताओं, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं। पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: जी,
0: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
2: श्रोताओं, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
0: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
2: जी,
0: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
2: लेकिन श्रोताओं, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
0: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी। फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था, और तो और गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
2: तो श्रोताओं, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
0: तो श्रोताओं, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए।
2: जी,
0: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा, अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो। विचार तो अच्छा था, लेकिन
2: एक नई समस्या सामने आई। वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं। और उन्होंने एक बहुत ही छोटी

0: गेंद बनाई।
1: जी कल्पना कीजिए श्रोताओ, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती,
0: जी
1: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
0: जी
1: यही तो है नवाचार।
0: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
1: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
0: जी
1: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: न स्याही की दवात चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
0: जी आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो वो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
1: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
0: तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
1: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो

0: बच्चे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।

0: से पूछते हैं। यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
2: होशियार,
1: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
3: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षरों की।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए, जरा सोचिए, सोचिए सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
2: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
3: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
4: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
3: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
5: माँ, ये चिट्ठी।
3: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
2: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने

0: अपनी माँ से पूछा,
1: माँ आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
0: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
1: अच्छा,
0: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
1: अच्छा,
0: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है।
1: हाँ
0: ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
2: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
0: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
2: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
0: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
2: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
0: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
2: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थीं और मुझ पर विश्वास करती थीं।
0: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
2: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
0: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
2: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें

0: इन बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
1: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
0: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
1: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
0: लगभग 10,000 बार।
1: 10,000 बार?
0: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
1: अच्छा,
0: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
1: अरे वाह,
0: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
1: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
0: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
1: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
0: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
1: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
0: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో జపాన్లో జరుగుతున్న 2026 ఆసియా క్రీడల తాజా సమాచారం వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: This is Delhi.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं शबाब अनवर. हम लेकर आ गए आपके लिए शाम के 5:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स. और आपको बता दें कि आज के दिन के एथलेटिक्स के इवेंट्स की फाइनली शुरुआत हो चुकी है. जी हाँ, दीज इवेंट स्टार्टेड ऑफ विद द मेन्स 100 मीटर्स इन विच अनिमेश खजूर एंड गुरिंदर वीर सिंह फ्रॉम इंडिया क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 मीटर सेमीफाइनल एट द एशियन गेम्स. अनिमेश खजूर फिनिश थर्ड इन heat and clocked 10.36 seconds to finish behind Thailand's Puripol Boonsoon and China's Zeng Kili. Khujur's third place finish was enough to earn him a qualification for the semi-final. Wahi par agar baat kare Gurinder Veer's Keith, unhone finish kiya second in heat 4 of round 1. Gurinder Veer clocked 10.38 seconds to finish behind Oman's Malham Al-Balushi, who won the heat in 10.29 seconds. His second place finish was enough to earn him a place in the semi-final. To ummeedein ab in dono se rahengi sari hi bhartiyon ki hame ant mein ek medal ki yahan se सिर्फ गुंजाइश नहीं, मेडल लेकर भारत में ये दोनों में से कोई एक तो जरूर वापस आए. अब बात करते वहीं पर वुमेन्स हेप्टाथलॉन के शॉटपुट में, जहां पूजा हैज मूव्ड ऑन टू द फोर्थ पोजीशन. इंडियाज पूजा मूव्ड ऑन टू द फोर्थ पोजीशन आफ्टर रजिस्टरिंग अ थ्रो ऑफ 11.44 मीटर्स इन अ थर्ड अटेम्प्ट. पूजा हैड रिकॉर्डेड 11.20 मीटर्स इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट बिफोर फाइनली मैनेजिंग 9.91 मीटर्स इन अ सेकेंड. लेकिन क्योंकि उनका 11.44 मीटर का तीसरा अटेम्प्ट उनका सबसे बेस्ट था, उसको कंसिडर किया जाएगा एंड शी इज मूव्ड ऑन टू द फोर्थ. एथलेटिक्स ट्रिपल जंप के अंदर भी निहारिका वशिष्ठ की कुछ ज्यादा बहुत बेहतर अच्छी शुरुआत नहीं रही है. फर्स्ट अटेम्प्ट उनका फाउल हो गया था, लेकिन उसके बाद अगर बात करें आशा लांगू की कि तो उनका एथलेटिक्स ट्रिपल जंप में पहला अटेम्प्ट ही बहुत अच्छा गया था 13.43 का, जिसकी वजह से क्योंकि उनका दूसरा अटेम्प्ट फाउल कंसिडर हो गया था, बट पहला अटेम्प्ट इतना अच्छा होने की वजह से शी स्टिल इन दैट सेफ्ड बफर वेयर शी कैन होप टू गेट क्वालिफाइड इफ she is able to either better a third attempt or possibly this in itself achieves her that. अभी तक के एथलेटिक्स की यही अपडेट्स हैं आपके लिए दोस्तों, लेकिन ये अपडेट्स लगातार जारी रहेंगे हर घंटे में, क्योंकि एथलेटिक्स के अंदर और भी अपडेट्स आते रहेंगे शबाब.
3: उधर स्क्वाश की बात करें तो ये भी एक ऐसा खेल है जिसने आज पूरे दिन भारत की पदक की उम्मीदों को जिंदा रखा है. पूरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, अभय सिंह और वीर चोटरानी ने एशियन गेम्स के स्क्वाश स्पर्धा के एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली शानदार प्रदर्शन करते हुए, जबकि जोशना चिनप्पा और बेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिश्रित युगल के अंतिम आठ में पहुंच गई. जूनियर विश्व चैंपियन और पदक के दावेदार अनाहत ने महिला एकल में सिंगापुर की वाई यिन ओ उयोंग को महज 19 मिनट में 3-0 से यानी कि 11-4, 11-5 और 11-17 से हराकर अभियान की शानदार शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. एक खास बात यह है कि सेमीफाइनल में पहुंचने पर भी तय नहीं होगा पदक, ये खास बात है. कुछ इसमें तब्दीली आई है, हम बताएंगे आपको. इसके बाद तन्वी ने भी सिंगापुर की वाई यान ओ योंग को 39 मिनट में 3-1 यानी के 5-11, 11-4, 11-5, 13-11 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. इन नतीजों के साथ महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में अनाहत और तन्वी के बीच ही मुकाबला तय हो गया है, यानी दो भारतीयों के बीच. पिछले एशियन गेम्स के विपरीत इस बार स्क्वाश की एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों का पदक पक्का नहीं होगा. कांस्य पदक के लिए सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे और चौथे स्थान का मुकाबला खेला जाएगा, ये खास बात है. तो काफी दिलचस्प रहेगा, एक बार फिर दो भारतीयों के बीच मुकाबला भी हमें को देखने को मिलेगा. तो आज का पूरा दिन स्क्वैश खिलाड़ियों ने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया.
1: जी शबाब, नाइसली पुट. एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग, जहां पर सुमित कुंदू ने आज भले ही अपने पहले दो बाउट्स की अच्छी शुरुआत करी हो, लेकिन तीसरे बाउट में चोटिल हो जाने की वजह से ही गॉट फॉरफीटेड और उनके जो ओपोनेंट थे इराक के अली अलसारे वो ऑटोमेटिकली क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर गए. वहीं पर अगर हम महिलाओं के लिए बॉक्सिंग के एंगल से देखें तो भारतीय भारतीय महिला बॉक्सर्स का भी कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। साक्षी चौधरी लॉस्ट टू कजाकिस्तान अलोवा बाल्केबेकोवा इन द वुमेन्स 51 केजी राउंड ऑफ 16 बाउट एंड एग्जिटेड द कंपटीशन। वहीं पर 65 केजी प्रीलिमिनरी राउंड ऑफ 16 में भारत की परवीन को वॉकओवर मिल गया थैंकफुली, विच वॉज गॉड सेंड गिफ्ट एंड नाउ शी हैज मूव्ड इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। शबाब
3: जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रदर्शन जारी रहा है। अब कई और ऐसे खेल रहे हैं जिसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन जिन खेलों में सबसे ज्यादा उम्मीद थी भारत को

0: मुक्केबाजी और निशानेबाजी उसमें उतना वैसा प्रदर्शन नहीं रहा जिसकी उम्मीद थी।
1: जी अफकोर्स निराशाजनक रहा, लेकिन फिर भी हमें उसमें भी एक ब्रॉन्ज मेडल आज प्राप्त हो गया। लेट्स नॉट फॉरगेट द मिक्स टीम स्कीट इवेंट दैट हैपेंड व्हिच गॉट अस द ब्रॉन्ज टुडे, शूटिंग बीइंग दैट सेविंग रेस, क्योंकि इट हैज बीन अ डिसअपॉइंटिंग रन ओवरऑल अगर शूटिंग की बात करें। लेकिन अभी आई विल कम बैक टू एथलेटिक्स दोस्तों, बिकॉज एथलेटिक्स में आज बहुत इवेंट्स हैं। तो हेप्टाथलॉन की अगर हम बात करते हैं ना कि वुमेन्स हेप्टाथलॉन आफ्टर 4 इवेंट्स क्या स्टैंडिंग है, तो भारत की पूजा इस वक्त बनी हुई है 8वें स्थान पर, और वहीं पर अनामिका कोजिन जपारम विल भी बनी हुई है 9वें स्थान पर। नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं तो फातिमा है, और नंबर 2 पर काई जुआन है। तो अभी ये कहना कि भारत यहां से कैसे क्वालिफाई करेगा या फिनिश ऑफ करेगा, ये बहुत अर्ली ऑन होगा, बिकॉज इसमें अभी और इवेंट्स एड ऑन होंगे, एंड देन वी विल कम टू सी दैट इन टोटैलिटी हाउ डज इंडिया स्टैंड, स्पेशली वेदर इट्स इंडियन वुमेन और इट्स इंडियन मेन, व्हेन इट कम्स टू द टेबल स्टैंडिंग्स की टॉप 3 में भारतीय मेन और भारतीय वुमेन एथलीट्स फिनिश कर रहे कि नहीं। लेकिन 4 इवेंट्स की समाप्ति पे हेप्टाथलॉन के रिजल्ट कुछ इस प्रकार रहे, और आपको इसके साथ साथ ये भी बता देंगे कि इस वक्त किस तरह की टेबल स्टैंडिंग्स यानी मेडल टेबल स्टैंडिंग क्या बनी हुई है भारत की। तो मेडल टेबल पर इस समय भारत है 14th पोजीशन पर, ही इज होपिंग दैट वी मूव ऑन द मेडल टैली, लेकिन अभी के लिए दैट इज ऑल दैट शबाब एंड मी साक्षी हैड इन दिस अपडेट। वी विल जॉइन यू बैक एट द 6:30 PM लाइव अपडेट ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: आंखों देखा हाल सुनेंगे। आंखों देखा हाल सुना रहे हैं हिंदी में आशीष कुमार चरंगू और अंग्रेजी में अमित अरोरा। आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम चलें।
1: नमस्कार, दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम से मैं आशीष चरंगू अपने साथी कमेंटेटर अमित अरोड़ा और अपनी ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 65वां संस्करण सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का अंडर 17 जूनियर बॉयज वर्ग में फाइनल मुकाबले के मुकाम तक पहुँच चुका है और इस फाइनल मुकाबले में आज जो भिड़ंत होगी वो होगी मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली CISCE और MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान।

0: हमारा इस समय डॉक्टर भीमराव स्टेडियम पर पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ जब यहाँ तमाम उपस्थित दर्शकों ने स्वर से स्वर मिलाकर उसे गाया तो यकायक रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक निश्चित रूप से एक ऐसी अनुभूति होती है जिसको शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल बात करते हैं 65वें संस्करण सुब्रतो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की, जिसका फाइनल मुकाबला अंडर 17 जूनियर बॉयज कैटेगरी में अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाला है। CISE मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली की टीमों के और MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल अतंकल केरला की टीमों के बीच। तो दोनों टीमें इस समय बीच मैदान पर कतारबद्ध हैं, उनके पीछे फीफा का ध्वज और सुप्रोतो कप का जो ध्वज है वो वहां पर नजर आ रहा है और दाईं तरफ इस समय जो आज के चीफ गेस्ट हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह, PVSM, AVSM और साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर सुरेश रैना इस समय नजर आ रहे हैं बिल्कुल दाईं तरफ। अमित, निश्चित रूप से एक अद्भुत नजारा इस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम पर नजर आ रहा है।
1: Absolutely, Ashish. Good evening to all the listeners of Akashwani. We can right now see Air Chief Marshal AP Singh, PVSM, AVSM, ADC, Chief of the Air Staff, and Chairman Subroto Mukherjee Sports Education Society. And along with him is Suresh Raina, who's being felicitated right now. Suresh Raina is the former international cricketer. And the beautiful field in front of our eyes has both the teams, players, and the two flags. This is the grand finale of 65th edition of Subroto Cup International Football Tournament. Junior boys under 17 category here at Dr. B.R. Ambedkar Stadium in the capital city of New Delhi. It is going to be a clash between Minerva Public School, CISCE, and MIC English Medium Higher Secondary School from the Malappuram district of Kerala. The Kerala team is dressed in red color, and the Minerva team, CISCE, in yellow. And both of the teams are just warming up, and they're also eagerly anticipating the arrival of meeting and shaking hands with the chief guest and the guest of honor. In the center, between the two teams, are the referees, match commissioner, junior warrant officer, Prasanta, main referee, Nayak Bhaskar Tamang. To his left, Assistant Referee 1, Sergeant Anurag. Assistant Referee 2, Corporal H.C. Joshi. Fourth official, Sergeant Chandan Kumar Yadav. And the reserve assistant referee today will be Corporal Alicio. So with Suresh Raina right here, I'm reminded, since Ashish, you have done a lot of cricket commentary, even when the cricket match starts, we've seen cricketers playing football. So football is a common denominator.
0: Absolutely. फुटबॉल कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी होते हैं उनकी रग रग में बसा होता है। क्रिकेट के मैदान पर भी हमने देखा है कि मैच शुरू होने से पहले वो किस तरह से पूर्वाभ्यास करते हैं फुटबॉल के साथ। और सुरेश रैना इस समय सामने हमें नज़र आ रहे हैं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ, और उनके ठीक पीछे यानी हमारे दाईं तरफ अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है। और क्या उनकी यादें यहाँ पर इस मैदान के साथ जुड़ी हुई हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। सुरेश रैना, जिन्होंने की कुल मिलाकर अगर बात करें उनके क्रिकेट कैरियर की, तो 18 टेस्ट, 226 एक दिवसीय मुकाबले और साथ ही साथ 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले उन्होंने खेले हैं, लेकिन आज वो मौजूद हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर इस फुटबॉल मैच के शुरुआत होने से पूर्व। इस समय वो धीरे धीरे आज के मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल AP सिंह, PVSM, AVSM के साथ गेस्ट ऑनर के रूप में इस समय सुरेश रैना वहां पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। पीले रंग की जर्सियों में है मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली CISE की टीम, जबकि लाल रंग की जर्सियों में है MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरला की टीम। इस समय खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए और निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ उत्साहवर्धक शब्द जरूर वो इन युवा खिलाड़ियों को जरूर कहेंगे। और हम सभी जानते हैं कि ये वो मंच रहा है सुब्रतो फुटबॉल टूर्नामेंट, जहाँ पर भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मिले हैं। चाहे आप भाईचुंग भूटिया की बात करें, रॉबिन सिंह की बात करें, सुनील छेत्री की बात करें, ब्रूनो कुटिनो की बात करें, श्याम थापा की बात करें, विक्टर अमलराज की बात करें, ना जाने कितने

0: ऐसे और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से उभर करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह को बनाने में कामयाबी हासिल की है। और इन खिलाड़ियों में हम कहीं ना कहीं भविष्य के सारे देख सकते हैं। भविष्य के वो नामी ग्रामी खिलाड़ी यहाँ पर इस मंच से आते रहे हैं और आते रहेंगे। और इस समय जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं सुरेश रैना, उनके साथ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम अग्रसर हो रहे हैं केरल की टीम की तरफ एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के खिलाड़ियों के साथ इस समय परिचय प्राप्त करते हुए। और जैसा कि एक परंपरा है, न केवल हाथ मिलाकर इस समय खिलाड़ियों का वो अभिवादन कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। जहां तक दोनों टीमों का सवाल है तो अब तक मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली की टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में किया है। कुल मिलाकर उन्होंने 41 गोल किए हैं और उनके खिलाफ सिर्फ एक ही गोल दागा जा सका है, जबकि एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम ने 28 गोल किए हैं और 3 गोल उनके खिलाफ हुए हैं अब तक। मुकाबला निश्चित रूप से काफी रोमांचक होने वाला है, काफी संघर्षपूर्ण होने वाला है। सूर्य अस्त हो चुका है लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर जो फ्लड लाइट है वो प्रज्वलित होगी और उसमें ये मुकाबला खेला जाएगा।
1: Yes, so it's a perfect weather to play sports. It's about 32 degrees Celsius and a humidity of 54%, wind blowing at 8 km per hour. And now that all the players and the match referees have been introduced to the chief guest, Air Chief Marshal AP Singh and guest of honor, Suresh Raina. They're all posing for a group photograph. Suresh Raina is dressed in a light blue blazer and white trousers, but he's got his sporting shoes there. And when a sports person is on the field, one can understand they would always like to play. And he's a member of the World Cup winning team. I'm sure his interaction there with all the players would have motivated these school students who are here with a dream of winning the Subrutho Cup.
0: लेकिन सुरेश रैना के ड्रेस सेंस की भी तारीफ करनी होगी। वायुसेना की तरफ से आयोजित किया जाता है ये खेल सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तहत ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वायुसेना के जो शर्ट होती है वो नीले रंग की होती है हमारे सैनिकों और अधिकारियों की, और उनसे मिलती जुलती हल्के रंग के नीले ट्राउजर में, बल्कि वहां पर मैं कहूं कि जो उनका कोट है, ब्लेजर है, उसमें वो आए हैं। तो ये एक सेंस ऑफ ड्रेसिंग भी आप उनकी कह सकते हैं कि अद्भुत है।
1: एंड आशीष, वी ऑल मस्ट हैव सीन सुरेश रैना विद द बैट एंड ही इज अ लेफ्ट हैंडेड बैटर, बट राइट नाउ व्हाट वी हैव जस्ट विटनेस्ड इज दैट ही हैज किक्ड द फुटबॉल, सो सेरेमोनियल किक, एंड दैट हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ स्माइल्स। Right now he's interacting with some of the veteran footballers and quite a camaraderie as the match is going to begin in few moments from now. There are in excess of 14,000 audience who are gathered here at Dr. Ambedkar Stadium. The two flags in the middle, the FIFA flag in yellow color and Subrutho flag in blue color. And most of the people sitting in the audience are school students. They have their placards, they are carrying those musical instruments, they are creating all the noise to pep up the environment. They are excited to witness the grand finale of Subrutho Cup Under 17 Boys 2026.
0: So is samay wapas Suresh Raina apne dharit sal ki taraf jate hue, dono teamein beech maidan par qatarbadh khade hui hain। जैसा कि अमित ने बताया कि आज जो दोनों टीमें हैं उनके खिलाड़ियों का आपको परिचय दे दूं। जहां तक फर्स्ट 11 का सवाल है मिनर्वा पब्लिक स्कूल CISC का, उसमें गोलकीपर के रूप में रहेंगे के योहिंगबा, मूसा आशिक, चिंकिन गाबा, सलाम महेश, मोहम्मद आजम खान, साइलेक्स ओइनम टीम के कप्तान टोनी खुद्रोम, पुनशिबा मैतई, चेतन तिवारी, राज सिंह और के योहिंगबा सिंह। जबकि एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम की तरफ से गोल रक्षक के रूप में रहेंगे प्रत्युष दे, इसके अलावा मोहम्मद शाहिद, रिम टोमी, एनोक एंटोनी।

0: मोहम्मद आदिल, एंथनी जो, मोहम्मद फैजान, जीतू बी जो कि टीम के कप्तान हैं, अमर अजीम, अद्वैत और तौफीक, और आज बीच मैदान पर रेफरी के रूप में रहेंगे नायक भास्कर तमा, असिस्टेंट रेफरी के रूप में पहले असिस्टेंट रेफरी के रूप में सार्जेंट अनुराग और दूसरे असिस्टेंट रेफरी के रूप में कॉर्पोरल एस सी जोशी, फोर्थ ऑफिशियल के रूप में सार्जेंट चंदन कुमार यादव और रिजर्व असिस्टेंट रेफरी के रूप में कॉर्पोरल अलीशो और मैच कमिश्नर जूनियर वारंट ऑफिसर प्रशांत था। तो खेल शुरू होने के लिए तैयार हैं। इस समय दोनों ही टीमें एक छोटा सा फोटो सेशन लेते हुए अपने अपने हिस्से में बीच मैदान पर आज की टीम के जो निर्णायक है वो मौजूद हैं और जो दोनों ध्वज थे फीफा का और सुब्रतो कप का वो इस समय धीरे धीरे मैदान से बाहर की तरफ निकलता हुआ।
1: So both the flags are being taken out of the ground and the chief guest and the guest of honor have also taken their positions now as we are inching closer to the start of the match. Both the teams are getting a group photograph along with the flag of their respective schools. Minerva Public School, CISCE from Mohali, Punjab. Their best performance so far has been quarterfinal appearance here at the Subroto Cup. Twice they've been in the quarterfinals. This is the first time they've reached the finals. And almost a similar story for the other team, MIC English Medium, HSS Athanikal, Malappuram District, Kerala. Their best performance has also been the quarterfinals. So both of them have already done their best by reaching the finals. And whosoever wins today, it will be their first win in under 17 boys of Subroto Cup. And I had a chance to speak with some of the footballers ahead of the match. And they said, Ashish, it's a big dream. And if they were to win, it will be like dream coming true for them.
0: जिसमें कोई संदेह नहीं है, कड़ी मशक्कत के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं। और केरल की टीम के लिए बात करूं, तो केरल के फारूक हायर सेकेंडरी स्कूल कोझिकोड की टीम ने पिछले वर्ष यानी कि 64वें संस्करण में अंडर 17 जूनियर बॉयज के कैटेगरी में एमनिटी पब्लिक स्कूल उत्तराखंड की टीम को 2-0 से हराया था और ये पहला अवसर था जबकि केरल की टीम ने सुब्रतो कप जीता था। क्या आज वो उसकी पुनरावृत्ति कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सामने उनकी चुनौती बहुत मजबूत है। मिनरवा पब्लिक स्कूल मोहाली CISCE की टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में खासा अच्छा प्रदर्शन किया है और उनकी टीम में जो लय है वो देखने वाली है। जो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन है, जिस तरह से पासिंग करते हैं और जिस तरह से आक्रमण करते हैं, मानो मैदान पर सुनामी आई हो इस तरीके की आक्रामक फुटबॉल वो खेलते हैं। और साथ ही साथ आक्रामक पंक्ति तो उनकी मजबूत है ही। सुरक्षा पंक्ति में मूसा आशिक जो हैं वो भारत के लिए अंडर 17 फुटबॉल टीम में शिरकत कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अनुभव है मिनरवा पब्लिक स्कूल मोहाली की टीम के पास। मुकाबला निश्चित रूप से काफी जबरदस्त होगा। इस समय हमारे बाईं तरफ वाले हिस्से में है पीले रंग की जर्सियों में CISCE की टीम, जबकि दाईं तरफ वाले हिस्से में लाल रंग की जर्सियों में MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम।
1: So the decibels are getting higher here. The audience is cheering their respective teams. Both the teams in yellow and red are in a huddle. And in moments from now, we will have the action beginning. A quick word on Air Marshal Subroto Mukherjee, who was the first Indian chief of the air staff, in whose name this tournament exists and has been there since 1960. So total three categories. Two have already seen the result before this. In the junior girls under 17 category, it was Jharkhand team that got the better of NCC by 2-0 and they won that category. In the sub junior boys under 15 category, we had West Bengal as the champion who got the better of Assam, although the difference there was just a solitary goal, 1-0. And now today on the 24th of September, this beautiful Thursday evening here at Dr. Ambedkar Stadium in New Delhi, action is ready to begin in junior boys under 17 category. What's your take, Ashish? Will it be the yellow team, Mohali, or the red, Keralam, who's going to win the trophy today?
0: मुझे लगता है कहीं ना कहीं पलड़ा जरूर वहां पर मिनरवा पब्लिक स्कूल की टीम का भारी रहने वाला है, जिस तरह का प्रदर्शन उनका इस पूरे टूर्नामेंट में रहा है। और अब यहां पर औपचारिकताएं पूरी होते हुई जो मैच कमिश्नर हैं जूनियर वारंट ऑफिसर प्रशांता, वो मुख्य अतिथि AP सिंह जो कि एयर चीफ मार्शल हैं भारत के, AP सिंह, PVSM, ABC

0: जोहिन बा तैयार अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को निकाला समानांतर पास के रूप में समय पहुंचा है मुसा आशिक के पास जो कि राइट फुट बैक के स्थान पर खेलते हुए सामने उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी बढ़िया पास वहां पर निकाले है समय धन्यवाद के लिए कोचिना और फिर से आक्रमण करना कोशिश लेकिन गलत पास वहां पर गेंद छिटकते हुए वहां पर दूर वाला छोर वाला छोटा एक बार फिर से ऐसे के खिलाड़ियों के पास और लेफ्ट फुट पर काफी कमजोर
1: Bengal crossed the North Andhra Pradesh, South Odisha coast near Kalingapatnam between late last night and early this morning, triggering heavy to extremely heavy rain in several.
0: मिनर्वा पब्लिक स्कूल जो कि कागजों पर काफी भारी प्रतीत हो रही है इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक 41 गोल वो दाग चुके हैं लगभग 6 की औसत अगर आप बल्कि 7 की औसत अगर मैं कहूं कुल मिलाकर 6 मुकाबले उन्होंने अब तक खेले हैं हर मैच में 7 की औसत से उन्होंने गोल दागे हैं इसी बीच थ्रो इन के बाद एक बार फिर गेंद टच रेखा को पार करते हुए लगातार दूसरा थ्रो इन इस समय पक्ष में जाता हुआ सीआईएससी की टीम के 15 नंबर की जर्सी में पुनशिबा मतई इस समय थ्रो इन करते हुए गेंद एक बार फिर से उनके पास बैक पास के रूप में गेंद मूसा आशिक के पास गोल रक्षक योनाबा के पास गेंद पहुंचा दिया है जो कि बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स के ठीक ऊपर इस समय पहुंच चुके हैं गेंद को नियंत्रण करने के साथ ही छोर बदला दूर वाले छोर पर इस समय आक्रमण करने की कोशिश बाईं तरफ से लेकिन गेंद एक बार फिर से वहां पर पुनशिबा मतई ने संभाला है एक गोल दाग चुके हैं सेमीफाइनल में वो मुकाबला जो हुआ था उनका असम की टीम के खिलाफ उसमें उन्होंने एक बेहतरीन गोल दागा था और अपनी टीम के लिए 3-0 की जीत को सुनिश्चित किया था फाउल इसी बीच वहां एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम के खिलाड़ियों का जिसके परिणाम स्वरूप ये फ्री किक इस समय दाएं छोर से सीआईएससी टीम के लिए तैयार वहां पर पुनशिबा मतई साथ में उनके खिलाड़ी खड़े हैं योनाबा सिंह ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया पेनल्टी बॉक्स के ऊपर पहुंची थी गेंद हेड द्वारा क्लियर करने में कामयाबी मध्य रेखा के नजदीक गेंद एक बार फिर से हेड द्वारा पास निकाला अपने साथी खिलाड़ी के लिए दूर वाले छोर पर इस समय गेंद को अपने कब्जे में किए हुए खिलाड़ी वहां पर सीआईएससी के और फ्लैंक बदला एक लंबा क्रॉस हवा में तैरता हुआ और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर नियंत्रण लेकिन जिस तरह से वहां पर ये फाउल हुआ उसके परिणाम स्वरूप ये फ्री किक इस समय मिलता हुआ एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम को केरल की टीम के खिलाड़ी इस समय धीरे धीरे गेंद को सरकाते हुए अपने साथी खिलाड़ियों की तरफ बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दूर वाले छोर पर इस समय गेंद को रखा एक लंबा शॉट लगाया और गेंद को वहां पर अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी अमर अजीम ने बैकपास के रूप में गेंद को पहुंचा अपने साथी खिलाड़ी के लिए लेकिन गेंद को छीना वहां पर बहुत ही खूबसूरती के साथ इस समय चेत्री और माफ कीजिएगा चेतन तिवारी ने जो कि इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए लेकिन गेंद छिटकती हुई एंड वक्त पर और गेंद गोल रेखा से बाहर चली गई तो एक अच्छा मूव एक अच्छा अवसर लेकिन बेकार जाता हुआ सीआईएससी टीम के लिए
2: Well, clearly the first 5 minutes, we've seen a couple of attacking shots coming from Minerva and their goalkeeper Pratyush Dev is being tested here, the Keralam goalkeeper. But right now, once again, a big aerial pass and the moment this aerial cross pass has been given to Muhammad Azam Khan, the right winger for Minerva, the audience certainly going and cheering the yellow team. This time, Muhammad Azam Khan giving it back to Chetan Tiwari who gives the ball to the left winger. And that's where they would like to pass it to Raj Singh, who's the attacker. But good interception there by the Keralam team as the foul happens. And the throw will be taken by the Minerva Public School, who is in the yellow jersey. 6 minutes into the progress and goal line still reads 0-0. But certainly we can see the action happening from both sides.
0: Silex team ke kaptan gend ko rakha aur pass de diya apne bayin taraf pahunche hue khiladi ki taraf. Goal rakshak ke paas is samay gend pahunchi hai, jo ki apne penalty box se kareeb kareeb 10-12 gaz aage ki taraf nikal kar aa gaya hai. Ek lamba cross wahan par aerial ball banane ki koshish ki thi, लेकिन गेंद टच रेखा को पार करते हुए और थ्रो इन इस समय केरल की टीम खेल रही है. दोनों ही टीमें फिलहाल 0-0 के बराबरी पर हैं. लगभग 9 मिनट का समय अब तक इस पहले हाफ का हो चुका है. गोल करने में अब तक दोनों ही टीमों को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है. हालांकि सीआईएससी की टीम ने अब तक एक दो अच्छे आक्रमण किए हैं, लेकिन उन्हें गोल में तब्दील नहीं कर पाए हैं. एक बार फिर से गेंद हालांकि पहुंची थी हाफ में जरूर वहां पर सीआईएसए के हाफ में, लेकिन फिर से आक्रमण करने की कोशिश वहां पर. दाईं तरफ गेंद को निकाला है वहां पर युवनबा सिंह के लिए. युवनबा सिंह गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए पेनल्टी बॉक्स के अंदर, माइनस के गेंद को खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा बचाव प्रत्युष दे के द्वारा. ग्राउंडर शॉट लगाया था, लेकिन अच्छे पूर्वानुमान के साथ दाईं तरफ डाइव करते हुए उन्होंने गेंद को रोका. उसके बीच एक बार फिर से आक्रमण और इस बार चूक नहीं हुई. पहला गोल इस फाइनल मुकाबले का डालने में कामयाब रहे हैं वहां पर मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली की टीम के खिलाड़ी. और क्या शानदार प्रदर्शन, जैसा कि हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि मिनर्वा पब्लिक स्कूल की टीम बहुत ही शानदार फॉर्म में है. बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अब तक ये प्रदर्शन किया है और आज भी इस फाइनल मुकाबले में खेल के लगभग 10वें मिनट में उन्होंने अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिलवा दी और एक चिर परिचित अंदाज में पूरी टीम गोल करने के बाद ठीक हमारे सामने कतारबद्ध खड़ी हुई और एक सल्यूट दागा उन्होंने वहां पर आज के मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल AP Singh, PVSM, AVSM.
2: Absolutely. I think that was quite a signature celebration. In the 10th minute of the game, we've got the first goal that has come from Minerva Public School in yellow jersey. They go 1-0 up, and right after scoring that goal, all the members, including the goalkeeper, came towards the sideline and forming one line and saluting. The game has resumed once again, and the Minerva side would certainly be very happy to get that one goal. That was where the goalkeeper was tested. The Keralam goalkeeper initially in the 9th minute, Pratyush Dev, dived towards his right, was able to save that goal, but a counter attack happened and the next time the goal was conceded. Right now the possession is with the MIC English Medium Kerala team as they take this corner. And will they be able to get the header to get the equalizer? No, it has been cleared by the goalkeeper of Minerva, Yohenba, as he hits an aerial and it goes to the other half in the Kerala side. And we've got the Kerala defender Mohammad Shahir there taking the possession of the ball. But once again the midfielder Chetan Tiwari, who's been in quite an attacking midfielder, getting the ball back from the Kerala side. A foul has been given. So after conceding the first goal, Keralam trying to up the ante and get the equalizer.
0: एक गोल के महत्वपूर्ण बढ़त फिलहाल सीआईएससी टीम को हासिल हो चुकी है खेल के 10वें मिनट में और थ्रो इन का अवसर इस समय केरल की टीम के लिए. थ्रो इन के बाद वहां पर बहुत ही आसानी के साथ पुनशिवा मेतई ने गेंद को क्लियर कर दिया हेड के द्वारा. एक बार फिर से थ्रो इन केरल की टीम के लिए. गेंद को वहां पर संभालने की कोशिश में मिनर्वा पब्लिक स्कूल के खिलाड़ी और गेंद को इस समय योनेबा ने संभाला था, लेकिन उनका पास ठीक नहीं हुआ. हालांकि डिफ्लेक्ट होने के बाद गेंद को क्लियर करने में मूसा आशिक ने किसी किस्म की कोई कोताही नहीं दिखाई. इस समय खेल चलता हुआ केरल की टीम के हाफ में दूर वाले छोर पर बहुत तेजी के साथ गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश होती हुई कप्तान के द्वारा, लेकिन कप्तान सेलेक्स ओइनम ठीक तरह से गेंद को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाए. गेंद प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी के पैर से टकराती हुई दूर वाले छोर से बाहर चली गई और थ्रो इन का अवसर इस समय मिलता हुआ सीआईएससी की टीम को. थ्रो इन पेनल्टी बॉक्स के अंदर पहुंचता हुआ एक टप्पे के बाद लेफ्ट फुटर, लेकिन गोल पोस्ट के बाईं तरफ से लगभग 1 या 2 गज की दूरी से निकलता हुआ बाहर चला गया और इस तरह से एक अच्छा मौका जो मिला था वहां पर वो बेकार जाता हुआ मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली सीआईसी की टीम के लिए. एक शून्य के बढ़त अभी भी

0: हासिल है टीम को। बीच मैदान पर कश्मकश चलती हुई कि गेंद पर नियंत्रण करने के साथ ही वहां गोल दागा जाए, अपनी बढ़त को बढ़ाया जाए सीएसई टीम की तरफ से। लगातार आक्रमण हो रहे हैं ठीक पेनल्टी बॉक्स के मुहाने पर, एक और लेफ्ट फुटर वहां पर पुंशिवा मैतेई के द्वारा, लेकिन गोल पोस्ट से इस बार काफी ज्यादा दूर था और निश्चित रूप से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं गोल रक्षक प्रत्युष देव के लिए। प्रत्युष देव ने गेंद को रखा, एक लंबा शॉट वहां पर हेड द्वारा गेंद को क्लियर करने की कोशिश, गेंद को नियंत्रण करते हुए इस समय 9 नंबर की जर्सी में राज सिंह, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन अब तक किया है। कुल मिलाकर 8 गोल दागे हैं राज सिंह के पास। एक बार फिर से गेंद स्लाइड करते हुए गेंद पर नियंत्रण करने की कोशिश पेनल्टी बॉक्स के अंदर, लेकिन गेंद हवा में उठी, नियंत्रण करने की कोशिश। सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी चौकन्ने थे इस बार केरल के, गेंद को उन्होंने क्लियर किया। दूर वाले छोर पर गेंद को संभाले हुए इस समय आजम खान गेंद को लेकर आगे बढ़ते कोशिश करते हुए एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया और सीधा वहां पर लेफ्ट फुट से उन्होंने क्रॉस देने की कोशिश, कामयाब हुए लेकिन सीधा गोलरक्षक से टकराती हुई गेंद बाहर चली गई।
1: Well, the entire tournament, the entire campaign of Minerva this time has been very, very dominant. It's been a very disciplined effort. They won all 4 league matches, didn't concede a goal, won the quarter-final without conceding a goal, and in the semi-final they won over Assam pretty convincingly as well. In the quarter-finals though, they had conceded a goal to Chandigarh, so in all 41 goals scored, only one conceded, and today they've been able to score the 42nd goal that came from Chetan Tiwari, who's been absolutely brilliant in the attacking midfielder. Right now, Kerala I'm trying to do some counter attack, but a foul has been called there and the ball will be in the possession of the Kerala fielder there, and Kerala will certainly have to get their act together first and foremost to get the equalizer, because that is from where they will start. But right now their center back Mohammed Shahin passes on an aerial pass which has been intercepted by the defender of Minerva School, and the ball once again comes back to Keralam, and it's intercepted by Minerva center midfielder Muhammad Azam Khan, who's running ahead with the ball trying to give a short pass to his colleague towards the left, Chetan Tiwari, who's already scored a particular goal. We've seen that bulk of the possession so far in 16 minutes has been with the Mohali team, and the first thing Keralam has to do is to ensure they get the ball back from the yellow jersey footballers and the team in red. And once again, from the left side of the goalpost, he has taken a hit, but a very good save by Pratyush Dev, the goalkeeper who's been tested in the last 15 minutes. He's saved the 2 very good strikes by the strikers of the Minerva team, particularly Raj Singh, who scored 11 goals so far in the tournament. He's looking for the 12th one. And Yohenba Singh, the other striker, both of them making chances. The ball is back on the half of Minerva as the defenders... Salam Mahesh passes on the ball to their captain Silas Onam, who gives the pass to Punchiba Mete, and that's an attempt there to be intercepted by the Kerala team, but that was futile. A foul was given. Ball is back again with the Minerva team as we have Tony Huidron, the defending midfielder, with the ball right now, passing it over to Punchiba Mete. Football, we do see that it is a team game. So the passing and receiving and citing your team members and ensuring those small passes is very essential, Ashish.
0: इसमें कोई दो राय नहीं, अगर आप सटीक पास दे सके, आपस में आपका समन्वय अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, और आप के आक्रमणों में जो पैनापन आता है वो निश्चित रूप से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। फिलहाल बीच मैदान पर खेल चलता हुआ
2: आकाशवाणी समय संप्रति वार्ता श्रूयंता प्रवाचिका निधि झा
0: इंग्लिश मीडियम मिनट में गोल किया गया था चेतन तिवारी के द्वारा, और ये टूर्नामेंट में उनका कुल मिलाकर अब तक का 10वां गोल था। कुल मिलाकर 42 गोल अब तक इस टूर्नामेंट में दाग चुकी है मिनर्वा पब्लिक स्कूल। मिनर्वा पब्लिक स्कूल के प्रशिक्षक रंजीत बजाज, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं कि मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी वो चलाते हैं, और उनकी एकेडमी ने MIC जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें राउंड ऑफ 16 में लिवरपूल की टीम को 6-0 से पराजित किया था, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता है రంజిత్ బజాజ్ కి ఫుట్బాల్ కి స్తర ఉద్దేశ్ ఊపర్ లాయా లేకన్ వో అండర్ 15 కి టీమ్ థి ఆర్ యే అండర్ 17 కి టీమ్ హై లేకన్ జ్యాదాతర్ ఖిలాడి ఉసి అండర్ 15 కి టీమ్ సే ఇస్మే ఖేల్ రహే హై ఫిల్హాల్ ఆక్రమణ ఫౌల్తా హువా ఖత్రా హో సక్తా హై ఆర్ ఇస్ సమయ బహుత్ హి సునహరా మౌకా థా గోల్ రక్షక్ రెంబా పూరి తరహ సే వహా పర్ చూక్ గయే థే గేంద్ కో ఏకత్ర కర్నే కే ప్రయాస్ మే గేంద్ కో వహా పర్ హవా మే ఉచాల్నే కి కోషిష్ కర్తే హువే కామ్యాబీ జరూర్ హాసిల్ కి థీ అద్వైత్ నే లేకిన్ ఉస్కే బాద్ గేంద్ నే రఫ్తార్ పకడి అద్వైత్ నే గేంద్ కా పీచా కియా లేకిన్ గోల్ పోస్ట్ కే దాయీ తరఫ్ సే మాత్ర 6 या 7 ఇంచ్ కి దూరీ సే వో గోల్ రేఖా కో పార్ కర్ గయీ तो एक अच्छा मौका और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि इस अवसर पर योहिन्बा की चूक थी वो जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ सकता था और बराबरी का गोल हासिल कर सकती थी केरल की टीम। फिलहाल दाईं तरफ से मूसा के पास गेंद, लंबा थ्रू पास एरियल, लेकिन लेफ्ट स्टॉपर ने गेंद को क्लियर करने की कोशिश की, हेड द्वारा गेंद को एक बार फिर से अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हुए समय सीआईसी के खिलाड़ी, और गेंद इसी बीच इसी कश्मकश में हमारे नजदीक वाली टच रेखा को पार कर गई और थ्रो इन का अवसर इस समय केरल की टीम के लिए। केरल की टीम के खिलाड़ी एक लंबा थ्रो इन अपने साथी खिलाड़ी तौफीक के लिए, लेकिन तौफीक से काफी ज्यादा दूर गेंद थी, प्रतिद्वंदी के खिलाड़ी ने क्लियर किया, लेकिन एक बार फिर से वहां पर थ्रो इन का अवसर। गेंद को संभाले इस समय टोनी, टोनी हुईद्रॉम बाईं तरफ गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन कोई भी साथी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था। प्रत्याक्रमण पर इस समय उतारू होती हुई केरल की टीम, मैदान के बीचों बीच गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन सुरक्षा पक्की पूरी तरह से चाक चौबंद, सीआईसी की गेंद को उन्होंने क्लियर किया। मैदान के बीचों बीच इस समय खेल चलता हुआ, गेंद को संभाला इस समय चेतन तिवारी ने, जिन्होंने अपनी टीम के लिए आज का अब तक का एकमात्र गोल किया। गेंद उसके पास बहुत तेजी के साथ देते हुए ट्रिपल करते हुए पहुंचे थे पेनल्टी बॉक्स के अंदर और शॉट लगाना चाहते थे दाएं फुट से, लेकिन सामने सुरक्षा पंक्ति खिलाड़ी के पांव से लगती हुई गेंद छिटकी और इस तरह से अवसर बरकरार जाता हुआ। एक लंबा ऊंचा क्लियरेंस राइट फुल बैक का केरल की टीम की तरफ से, गेंद को एक बार फिर से कब्जे में के वहां पर चेतन तिवारी ने, और इस बार बहुत बढ़िया शानदार शॉट टॉप ऑफ पेनल्टी बॉक्स से, लेकिन सीधा गोल पोस्ट के काफी ऊपर से गेंद निकल गई। इस अवसर पर सलाम महेश को गेंद थमाई थी इस अवसर पर चेतन तिवारी ने, और सलाम महेश ने किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती, फर्स्ट टाइमर शॉट लगाया लेकिन दिशा को नियंत्रित नहीं रख पाए और गोल पोस्ट के ऊपर से गेंद निकलती हुई बाहर चली गई। अभी भी एक गोल की बढ़त हासिल है इस समय सीआईसी की टीम को केरल की टीम के खिलाफ अंडर 17 जूनियर बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट के इस फाइनल मुकाबले में, जो कि दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर दूधिया प्रकाश में इस समय खेला जा रहा है।
1: Well, in the 19th minute of the game, another beautiful attacking shot by Chetan Tiwari. It just had a little height, otherwise that would have been the second goal for Minerva. But we would also have to say that Kerala had their very good chance in the 18th minute when there was an error on the part of the goalkeeper for Minerva, Johemba. He would consider himself very lucky as Kerala once again tried to get the possession of the ball. And this time Taufik, their striker who's already made 8 goals, makes an aerial shot. And this time Johemba makes no mistake. Gets both of his hands to the ball as the goalkeeper for Minerva Public School, CISCE, now passes the ball to the right back, which is their captain, Silex Onam, and he passes the ball back to the goalkeeper. And let's see whether he hits a big aerial shot or passes it to his left back, which he does. So this time, Salam Mahesh has the possession of the ball as the left back. Passes the ball back to the goalkeeper. So they're taking their time. They're already 1-0 ahead. They're trying to get possession of the ball and ensure that Kerala doesn't get any chance to. But this time, a big pass, and that was towards the left winger. And another move being made from the left flank. This time there's a cross pass as the ball now comes to the right winger. And it'll be interesting if we've got Mohammad Azhar Khan, who has the ball right now in the right wing, trying to tackle the defenders of Keralan team, who've done reasonably well. Mohammed Shahid and Rim Tony, the two central back, trying to ensure that they do not let the Mohali team penetrate and concede another goal. This time the ball comes back to the Mohali end, and goalkeeper passes it to the right back footballer, who passes it back to the goalkeeper. What I observe right now, Ashish, is

0: that since they've already got a lead, the solitary goal. Minerva team is taking their own time.
1: समय अभी काफी बचा हुआ है और डिफेंसिव होना अक्सर घातक होता है. आक्रमण आप कीजिए और समुचित रूप से आक्रमण कीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा. फिलहाल मिनर्वा की टीम को 1-0 के बढ़त हासिल है केरल की टीम के खिलाफ. सीआईसी की टीम है मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली और एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम. इस समय कश्मकश चलती हुई दूर वाले छोर पर गेंद को अपने नियंत्रण में रखने की, लेकिन गेंद दूर वाले छोर से बाहर चली गई. थ्रो इन का मौका वहां पर केरल की टीम को. पर्याप्त प्रदर्शन और वहां पर जैसे ही गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिस तरह से सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने वहां पर बाधा पहुंचाई, उसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से ये फाउल दिया जाएगा भास्कर तमांग के द्वारा जो कि रेफरी हैं. और चेतावनी भी वहां दी जाती हुई खिलाड़ी को कि इस तरह के खेल को खेलने से आप बचे, और पीला कार्ड वहां पर दिखाया जाता हुआ. तो न केवल मौखिक चेतावनी बल्कि पीला कार्ड, और बिल्कुल बनता था क्योंकि वो बिल्कुल गेंद के नजदीक नहीं थे. दाईं तरफ से आक्रमण हो रहा था केरल की टीम के. आक्रमक पंक्ति के खिलाड़ी गेंद को संभाले हुए काफी तेजी से आगे की तरफ निकल रहे थे और उनके पैर में उन्होंने अपने पैर अटका करके उनको गिराने की जो चेष्टा की, उसके परिणाम स्वरूप ये फाउल. तो फ्री किक इस समय केरल की टीम के लिए. देखना यह है कि क्या इस फ्री किक से वो बराबरी का गोल हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं. दूर वाले छोर के दाईं तरफ पेनल्टी बॉक्स से करीब करीब 10 गज की दूरी पर इस समय ये फ्री किक लिया जाता हुआ. केरल की टीम के 4 खिलाड़ी पेनल्टी बॉक्स के अंदर किसी भी अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार. 3 खिलाड़ियों की एक दीवार बना ली है वहां पर सीआईसी की टीम के खिलाड़ियों ने जो कि पीले रंग की जर्सियों में खेल रहे हैं. तैयार फ्री किक के लिए. लंबा शॉट, ताकतवर लेकिन दिशा से काफी दूर, कोई भी खिलाड़ी उसको छू नहीं पाया और गेंद गोल रेखा को पार कर गई. और इस तरह से गोल किक का अवसर इस समय सीआईसी की टीम के लिए. 1-0 के बढ़त सीआईसी की टीम को इस समय हासिल है इस फाइनल मुकाबले में केरल की टीम के खिलाफ. दूधिया रोशनी में ये मुकाबला खेला जाता हुआ, लेकिन जो प्रकाश स्तंभ हैं वो हमारे पीछे वाले जो हैं स्तंभ, वो तो पूरी तरह से प्रज्वलित हैं, लेकिन सामने के 2 प्रकाश स्तंभ अभी तक प्रज्वलित नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ रोशनी का जो है अभाव बीच मैदान पर नजर आता है.
0: Well, it's a... two light lamps right behind, they are providing the light, and in the front we've got the moon trying to compensate some light from the sky. Meanwhile, action happening in the grand finale of the 65th Subruto Cup, as after 25 minutes of play, Minerva Public School CISCE lead MIC English Medium High Secondary School Malappuram Kerala 1-0, and that goal has been scored by Chetan. Meanwhile, 1 yellow card has also been given to the Minerva team. Right now the ball is back again with the Minerva, as they have the possession and they're trying to make more moves from the left flank, as Anthony Joe, the central midfielder, trying to tackle Tony Hudron, the defender midfielder from Minerva. And right now Tony Hudron passes on the ball to Muhammad Azam Khan.
1: तो इस समय केरल के हाथ में खेल चलता हुआ. कश्मकश दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस समय दिखाते हुए कि किस तरह से गेंद को वो अपने नियंत्रण में रखें. बैक पास के रूप में योनेबा के पास गेंद पहुंची है, जो कि बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स से बाहर निकलकर इस समय गेंद को अपने नियंत्रण में किए हुए हैं. और इस रोचक फुटबॉल मुकाबले का विवरण तो हम जारी रखेंगे ही, लेकिन फिलहाल एशियाई खेलों में क्या कुछ हो रहा है जापान में, उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के लिए हम आपको लिए चलते हैं अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के स्टूडियोज. भारत के खिलाड़ी वहां पर अपना सर्वस्व झोंकने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के लिए पदक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं एशियाई खेलों में क्या है कुछ ताज़ा समाचार.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद है शबाब अनवर. एंड द बिग न्यूज दैट वी ब्रिंग टू यू इन द 6:30 लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन

0: Games 2026 is from the women's 10,000 meter finals. Yes, we have our Indian athlete Seema, who went on to get the bronze medal for us and for herself, clocking a timing of 32 minutes 50.05 seconds. She finished on the third spot, right behind Bahrain, who grabbed the gold medal, while Japan's Tanaka Nozomi grabbed the silver medal. Good news coming in from the world of athletics, as was much expected. We are hoping that these medals go on increasing, because athletics is one of the big hopes that India is going to be relying on. In the other news from athletics, hum aapko bata de ki women's triple jump ke andar Asha Elango missed out on a medal. Ji haan, Asha Elango could not improve. Unka jo pehla attempt tha, it was of 13.43. Second one was invalid. Third attempt was 13.83. Fourth was 13.63. Fifth was 13.65. And sixth was 13.59. अब आपको ये बता दे कि जो because she missed out on a final, what was the reason for that? It was because she was tied with China's Wai Li, but still with a best of 13.83. But Yai Li had a better second best. जो यहाँ पर आशा इलांगो का second best था वो invalid consider किया गया था, जबकि China की Yai Li का second best was 13.83 meters, and hence the Chinese went on to get the bronze medal, while Asha Elango from India just missed out by a whisker from scripting history in women's triple jump today. But maybe better luck next time in life, definitely. Ab baat karte hain women's heptathlon ki in short put, where Pooja moved on to the fourth spot after registering a throw of 11.44 meters in her third attempt. I will carry on with these updates in athletics, but right now it's also time for me to cue back in Shabab, who has some updates to share with all your lovely people. Also,
1: bahut achi khabar aapne shuru mein sunayi, सीमा कुमारी के, जिन्होंने कहां से पदक जीता। और अब ऐसे खेल के बारे में जानते हैं जिनका ये मुकाबला शुरू होने से पहले पदक की पूरी उम्मीद सभी को होती है, वो खेल कबड्डी है, आप जानते ही हैं। तो आज के जो मुकाबले कबड्डी में समाप्त हुए हैं, उसमें दोनों वर्गों के सेमीफाइनल की लाइनअप भी तय हो गई है। पुरुष और महिला कबड्डी दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। भारतीय महिला टीम कल सुबह 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार नेपाल के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी, और इसके बाद भारतीय पुरुष टीम सुबह 10:45 पर थाईलैंड से मुकाबला करेगी। और एक यहां पर हम आपको बता दें कि एक अपसेट हुआ है, हालांकि उसका संबंध भारत से नहीं है। टेबल टेनिस का वो स्पर्धा है, और उसमें 1990 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि चीन चैंपियन नहीं बना है। इसमें जापान में आप जानते हैं कि मेंस टीम टेबल टेनिस फाइनल में चीन को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। मेजबान टीम ने गोल्ड छीन लिया है। मेजबान जापान ने चीन को 26 साल लंबे दबदबे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस हार के साथ चीन 1990 के बाद पहली बार एशियन गेम्स के मेंस टीम टेबल टेनिस चैंपियन नहीं बन सका है। तो ये एक उलटफेर बहुत बड़ा हुआ टेबल टेनिस में।
0: हाँ जी शबाब, एंड कैरिंग ऑन दी अपडेट्स ऑफ एथलेटिक्स, आपको ये भी बता दें, आपको हमने ये तो बता दिया वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल्स में सीमा कुमारी ने आज ब्रॉन्ज जीत लिया, लेकिन वही वुमेन्स हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स की हीट वन में अनामिका ने फिनिश किया चौथे स्पॉट पर विद द रिजल्ट ऑफ 14.80। वही वुमेन्स हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स हीट टू में पूजा फिनिश ऑन द फिफ्थ स्पॉट विद द रिजल्ट ऑफ 14.61। सो हेप्टाथलॉन के सारे इवेंट्स एक साथ जब टोटल किए जाएंगे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस को, आफ्टर दैट वॉट एवर द टोटल स्टैंड्स विल बी द क्यूमुलेटिव फिगर टू डिसाइड कि कौन सा देश फिनिश करेगा इन द टॉप थ्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये रिजल्ट्स हम आपको कल ही बता पाएंगे, बिकॉज हेप्टाथलॉन के कुछ इवेंट्स कल भी होने वाले हैं दोस्तों, एंड आफ्टर दैट विल बी द फाइनल मेडल टैली काउंटिंग एंड ऑल्सो द टोटल नंबर्स काउंटिंग टू विच विल डिसाइड विच कंट्री स्टैंड्स ऑन विच पोजिशन। एंड अ क्विक वन ऑल्सो इन एथलेटिक्स इज दैट अनिमेश कुजूर एंड गुरिंदर वीर सिंह हैव क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 मीटर सेमी फाइनल एट द एशियन गेम्स। वेल, अनिमेश कुजूर हैड अ टाइमिंग विच क्लॉक्ड ऑफ 10.36 सेकेंड्स, वाइल गुरिंदर वीर Singh had a timing of 10.38 seconds. We'll have to see how that develops on the athletic front. And some good news that has come will leave us with the smile of the 10,000 meter finals in women's. Shabab, jo humne bataya.
1: Aur ek achhi cheez aaj bhi rahi hai ki bahut logon ko ye ummeed thi ki shayad Korea se muqabla hockey mein kada ho, lekin Bharat ne use bhi nikal liya aasani ke saath 8-2 se.
0: Haan ji, hockey ke andar to dabdaba raha hi hamesha se Bharat ka hockey, kabaddi, these are the sports where we should be counting in the medals, and of course not to forget cricket also, the men's cricket also, the Indian representation which shall be starting in the next few days also. But women's world final ki baat kar lete hain, aaj usme kya hua, Pranithi Nayak finished 6th in the women's vault. A disappointing performance coming in over there. More updates will carry on in athletics in the next 1 hour. Also, हम अपने सारे listeners को बता दें. फिलहाल आप सबके चेहरों पे ये छोटी सी हंसी छोड़कर जा रही है कि सीमा कुमार

0: कुमारी ने ब्रॉन्ज ग्रैब कर लिया एथलेटिक्स में इन वुमेन्स 10,000 मीटर्स फाइनल्स. वील जॉइन यू बैक एट द 7:30 अपडेट. फॉर नाउ इट्स शबाब एंड मी साक्षी सेइंग गुड बाय.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
2: Thank you very much for that update on the Asian Games 2026. Congratulations to Seema for winning bronze for India in 10,000 meters. And of course, in men's hockey, after beating Indonesia, Sri Lanka, India got the better of Republic of Korea today, very easily 8-2. But one interesting sport that's been included in Asian Games this time, Ashish, is tech ball. It's a combination of table tennis and football. And wonder whether for those who are interested in football can actually excel in tech ball as well. And even as you ponder on it, the scoreline here in the final still stands 1-0 in the favor of Minerva Public School CISCE. The Keralam side has been looking for the equalizer, but right now there's been a stoppage of play as we see the physio going out there in the field to address one of the fielders of Minerva Public School CISCE who needs some medical attention. The other players are trying to hydrate themselves. The humidity of 54% warrants that by the time physio addresses the players' needs, the others can have a quick water break. And this time, this year in 2026, when the FIFA World Cup was hosted by America, Canada and Mexico, we did see that in the first half of 45 minutes, for the first time in FIFA history, a hydration break was also introduced. Meanwhile, as far as the rules here in Subruto Cup are concerned, there are two halves of 35 minutes each. We're nearing the conclusion of the first half. A quick recap of the proceedings so far in the 12th minute. It was Minerva, Mohali Punjab, when their attacker Chetan got the goal for them. Since then, there have been some counter-attacks by Keralam, but they still are looking for the first goal. So physio has attended to the medical needs. Everything is okay now as the players resume action. Do you think with 3 minutes left for the first half, Ashish, we'll see Kerala team scoring that first goal?
3: जी हाँ बिल्कुल. कहीं ना कहीं वो जो मौके हैं अगर धुनाने में आप कामयाब नहीं होते तो आपके लिए समस्याएं पैदा होती हैं. फिलहाल मोहम्मद आजम खान जो कि चोटिल होने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे सीआईएससी टीम के, वो इस समय मैदान में प्रवेश करने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं. फिलहाल 10 खिलाड़ियों से खेलती हुई सीआईएससी की टीम केरल की टीम के खिलाफ एक लंबा शॉट दूर वाले छोर से बाहर की तरफ निकलता हुआ और थ्रो इन इस समय मिलता हुआ मिनरवा पब्लिक स्कूल मोहाली सीआईएससी की टीम. चार नंबर की जर्सी में चिंखेन कानबा तैयार अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखने के साथ ही 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त इस समय उनके पास हासिल है. मध्य रेखा के नज़दीक अपने साथी खिलाड़ी की तरफ गेंद को उन्होंने उछाला. थ्रो इन के रूप में एक लंबा एरियल बॉल दाईं तरफ छोर बदलने के साथ ही यनबो सिंह के पास गेंद. अच्छा नियंत्रण उनका, सामने प्रतिद्वंदी टीम का खिलाड़ी मौजूद है लेकिन उसे छकाने की कोशिश और स्ट्राइकिंग सर्कल की वहां पर पेनल्टी बॉक्स के अंदर. ये अच्छा पास था लेकिन ठीक तरह से उसको नियंत्रित नहीं रख पाए. गेंद हालांकि फिर से संभाली है वहां पर सीआईसी टीम के खिलाड़ियों ने और सेलेक्स ऑयनम जो कि टीम के कप्तान हैं उन्होंने पेनल्टी बॉक्स से 3 या 4 गज की दूरी से एक लंबा शॉट लगाया था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं. अभी भी 1-0 के बढ़त हासिल सीआईसी टीम को. लंबा शॉट गोल रक्षक प्रत्युष देव का गोल किक के रूप में बीच मैदान पर कश्मकश होती हुई दोनों ही खिलाड़ियों के बीच टीमों के खिलाड़ियों के बीच की गेंद को अपने नियंत्रण में रखें और आक्रमण करें. बाईं तरफ से इस समय आक्रमण करने की कोशिश 11 नंबर की जर्सी में अमर अजीम के पास गेंद पहुंची थी और एक अच्छा पास उन्होंने निकाला था अपने साथी खिलाड़ी के लिए लेकिन इसी बीच प्रतिद्वंदी उनके पाँव से लगती हुई गेंद बाहर की तरफ चली गई उनके साथी खिलाड़ी के पैर से लगती हुई और ये थ्रो इन इस समय है सीआईसी की टीम के लिए लेकिन वहाँ पर गलत थ्रो इन और उसके परिणाम स्वरूप काफ़ी देर कर दी थी इस थ्रो इन को लेने के लिए जिसकी वजह से ये फैसला पक्ष में जाता हुआ अब केरल की टीम के लिए. केरल की टीम के खिलाड़ी थ्रो इन करने के लिए तैयार. वहाँ पर मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आदिल का थ्रो इन पेनल्टी बॉक्स के ऊपर लेकिन अच्छा क्लियरेंस वहाँ पर सुरक्षा पंक्ति की टीम के द्वारा सी आई सी के आक्रमण करने की कोशिश लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं. सिर्फ राज सिंह थे जो कि गेंद से काफ़ी ज़्यादा दूर थे और उसका कोई लाभ उनको मिलने वाला था नहीं. फिलहाल मैदान के बीचों बीच एक बार फिर से आक्रमण करने की कोशिश चेतन तिवारी.

खिलाड़ी के पास गेंद, अच्छा समानांतर पास मैदान के बीचों बीच इस समय हाफ में, बल्कि अगर कहूं कि केरल के हाफ में खेल चलता हुआ तो ज्यादा उपयुक्त होगा। एक दूसरे को पास देके, छोटे छोटे पास देके आगे बढ़ने का प्रयास, आक्रमण करने की कोशिश होती हुई योंगबा के पास गेंद, बैक पास के रूप में साथी खिलाड़ी की तरफ निकला था।

0: रहे हैं समय, एक बार फिर से मूसा के लिए गेंद दाईं तरफ वाले हिस्से में, एरियल बॉल अपने कप्तान के लिए, गेंद को निकाला था वहां पर साइलेक्स के लिए, साइलेक्स ने एक बार फिर से सुरक्षा पंक्ति में मौजूद खिलाड़ी की तरफ गेंद को निकाला, पिंटो के पास इस समय गेंद है, गेंद को उन्होंने निकाला अपने साथी खिलाड़ी की तरफ, पिंटो मध्य रेखा को पार करने के साथ ही गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को देने में वहां पर कामयाब होते हुए, एक बार फिर से उनके पास गेंद और एक बढ़िया पास वहां पर मिलता हुआ चेतन तिवारी को, दो खिलाड़ी गेंद को उनसे छीनने की कोशिश करते हुए, दाईं तरफ योगमा के पास गेंद, योगमा के सामने खिलाड़ी मौजूद, पेनल्टी बॉक्स के दाईं तरफ से प्रवेश किया, छकाने की कोशिश करते हुए बहुत बढ़िया ड्रिबल, गेंद अभी भी उनके पास है, बैक पास के रूप में गेंद को दे दिया इस समय पुन शिवा मैथई के लिए, और पुन शिवा मैथई ने गेंद इस समय बढ़ा दी है एक बार फिर से मूसा आशिक के पास, जो कि अपने ही हाथ में मध्य रेखा से करीब करीब दो या तीन गज अंदर गेंद को अपने नियंत्रण में रखने के बाद गेंद को माइनस कर दिया वहां पर उन्होंने गोल रक्षक योनबा की तरफ। योनबा ने दूर वाले छोर पर गेंद को निकाला चिंकेन गानबा के लिए, चिंकेन गानबा इस समय साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए बैक पास के रूप में योनबा के पास, जानते हैं कि मध्यांतर का समय अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक गेंद को अपने पास रखने की कोशिश इस समय होती हुई सीआईसी टीम के खिलाड़ियों की तरफ, और उसमें पूरी तरह से कामयाब होते हुए सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी एक दूसरे को पास देकर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दूर वाले छोर पर एक बार फिर से आक्रमण बनाने की कोशिश, क्या कामयाब होंगे? जी नहीं, गेंद को वहाँ पर छीनने में कामयाब केरल के खिलाड़ी, और एक लंबा चिप वहाँ पर किया है सीएस के हाथ में, लेकिन सुरक्षा पंक्ति में चाक चौबंद मूसा आशिक ने गेंद को वहां पर हेड के द्वारा क्लियर किया, गेंद पहुंची है वहां पर 10 नंबर के खिलाड़ी में इस समय योनबा सिंह के पास, योनबा सिंह ने दूर वाले छोर पर गेंद को निकाला, गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में, लेकिन वहां पर जिस तरह से फाउल हुआ उसके परिणाम स्वरूप ये फ्री किक, हालांकि गेंद को लेकर जब आगे बढ़े थे तो उसके बाद गोद में डाल दिया था वहां पर गेंद को, और रेफरी वहां पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं भास्कर तमांग कि जब मैंने सीटी बजा दी तो उसके बाद आपने गेंद को गोल में क्यों डाला, और इस तरह से आज का ये दूसरा पीला कार्ड भी सीआईसी की टीम के खिलाफ।
1: Well, absolutely, but even though the goal was scored there and the audience thought that the goal was scored, there was a little bit commotion, but it came only after the whistle was blown. But meanwhile, another attempt, and what a beautiful shot by Kerala. We'll have to see definitely whether this was a goal that has been scored or the offside rule comes into picture. The Kerala side is celebrating, and looks like just moments before the first half concludes, Kerala side has been able to score the equalizer. It was a move that was created by Anthony Joe. He passed the ball to Taufik, who's been the leading striker so far. He has scored 8 goals, and along with Adwait there, it was a very nice acrobatic goal that he scored, to the delight of audience who have gathered here. So certainly, as we come to the conclusion of the first half, one can say that it's been even Stevens between the two sides. While bulk of the possession has been with the Minerva Public School, yet you cannot discount the Keralam side. The action is truly worthy of being the grand finale of Subrata Cup International Football Tournament 2026. There's music here, even as the first half has concluded. And this would be a break of 10 minutes, and then we'll move to the second half of 35 minutes.
0: तो जैसा कि हम कह रहे थे अमित, कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने खेल में सुरक्षात्मक रवैया अपना लेते हैं तो वो आपके लिए घातक हो सकता है, और वही बात हुई कि मध्यांतर से ठीक एक क्षण पहले वहां पर केरल की टीम को एक मौका मिला आक्रमण करने का, उन्होंने आक्रमण किया पेनल्टी बॉक्स के दाईं तरफ से, उन्होंने एक सटीक शॉट लगाया जो कि गोल पोस्ट के अंदर गया, और इस तरह से उन्होंने मध्यांतर से पूर्व मात्र 2 या 3 सेकंड पहले बराबरी का गोल हासिल कर लिया, और कहीं ना कहीं इसकी वजह ये मैं मानूंगा कि सीआईसी के खिलाड़ी काफ़ी देर से सुरक्षात्मक खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि हमने जिक्र भी किया था कि उन्हें को यह आभास हो गया था कि मध्यांतर का समय नज़दीक है, ऐसे में वो गेंद को अपने पास रखने की ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, और ऐसे प्रयास में कई बार चूक अगर हो जाए तो प्रत्याक्रमण काफ़ी भारी पड़ता है।
1: Absolutely, I think both the sides will be pretty tired of all the action they've done in 35 minutes, but Kerala

0: trying to stop them. The news here from the capital city, Dr. Ambedkar Stadium, at halfway stages, that both the teams, Minerva Public School, CISCE, Mohali, Punjab, and MIC English Medium, HSS, Kerala, are tied 1-1. And the goal, the equaliser for Kerala, came in the dying moments before the first half just finished. So the 10 minutes half-time is over, and our dancers, wearing the traditional Punjab dress along with their dhol, are coming out of the field, giving way to the fielders. This time, both the teams will swap the ends. Kerala side in red jersey will now be playing from left to right, and the Minerva team in yellow jersey will be playing from right to left. The weather is good. We can see the Subroto flag proudly waving in the air, and the cheers of the audience adding to the atmosphere. Ashish.
1: तो अमित, जिस ताने बाने को बुना था भारत के पहले एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने, और 1960 में सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, वो अब तक अपने 65वां संस्करण पूरा करने जा रहा है, और पिछला संस्करण जो कि 64वां संस्करण था, उसमें कुल मिलाकर 4,351 स्कूल, 69,616 प्रतिभागियों ने उसमें शिरकत की थी, और ये एक इतना बड़ा आयोजन था कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में उसको जगह मिली। और जिस तरह से स्पोर्ट्स को, खेलों का उत्थान लगातार करता आ रहा है निर्बाध रूप से स्पोर्ट्स मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी, उन्हें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिला, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से 2016 में, तो एक बेमिसाल कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा है सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी का भारत में फुटबॉल के प्रचार प्रसार का, जहां तक सवाल है। तो मध्यांतर के बाद दूसरे हाफ का खेल शुरू होने वाला है। दोनों ही टीमें मध्यांतर तक एक एक गोल की बराबरी पर, और इसके साथ ही दूसरे हाफ का खेल शुरू होता हुआ रेफरी की एक लंबी सीटी के साथ ही गेंद को समय संभाले हुए हैं मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली के खिलाड़ी सीआईएससी। पहला गोल उन्होंने दागा था, और मध्यांतर से दो या तीन क्षण पहले बराबरी का गोल दागने में कामयाब रही थी केरलम की टीम। फिलहाल गेंद को बहुत तेजी के साथ अपने कब्जे में करने के साथ ही एक दूसरे को पास देकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इस समय बैक पास के रूप में गेंद को बढ़ा दिया है अपने लेफ्ट फुल बैक की तरफ, 5 नंबर की जर्सी में गेंद को इस समय संभाले हुए मूसा आशिक। मूसा आशिक ने गेंद को निकाला 7 नंबर की जर्सी में, इस समय क्या मौका उनके पास है। मोहम्मद आजम खान ने एक लेफ्ट फुटर लगाया जरूर था, लेकिन काफी कमजोर और दिशा से काफी दूर, और परिणाम स्वरूप प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी से टकराने के साथ जैसे ही गेंद गोल रेखा को पार कर गई, एक फ्लैग किक वहां पर मिल गया इस समय सीआईएससी की टीम के लिए। सीआईएससी टीम के खिलाड़ी इस समय भरपूर कोशिश करेंगे कि शुरुआत में ही वो बढ़त हासिल कर लें। 6 खिलाड़ी इस समय पेनल्टी बॉक्स के अंदर, और उसमें ज्यादातर की एकाग्रता गोल बॉक्स के आसपास, एक बिल्कुल मैदान पर तैरता हुआ छोटा सा पास 9 नंबर की जर्सी में। राज सिंह गेंद को अपने नियंत्रण में रखे हुए, पुनशिबा के पास गेंद है, पुनशिबा मेहताई ने कोशिश वहां पर जरूर की लेफ्ट फुटर से गेंद को चिप करने की, लेकिन अपने इरादे में कामयाब ठीक तरह से हुए नहीं। प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी से गेंद टकराते हुए गोल रेखा को एक बार फिर पार कर गई, और यह लगातार दूसरा फ्लैग किक इस समय सीआईएससी की टीम के लिए। पुनशिबा मेहताई का एक ऊंचा हवा में तैरता हुआ ये शॉट गोल बॉक्स के ठीक मुहाने पर गेंद को हेड करने की कोशिश, लेकिन वहां पर फाउल करार दिया गया, और परिणाम स्वरूप ये फ्री किक इस समय मिलती हुई केरलम की टीम के लिए। केरलम की टीम के स्टॉपर बैक ने एक लंबा किक लगाया, गेंद पहुंची है वहां पर सीएससी के हाफ में, समानांतर पास के रूप में मूसा के पास गेंद है इस समय। मूसा गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए एक तिरछा एरियल पास निकाला दूर वाले छोर पर, क्या

कामयाबी मिल सकती है अयम्बा को वहां पर, लेकिन उनसे प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी जैसे ही गेंद को छीनना चाहते थे उनके पैर से गेंद टकराती हुई दूर वाले छोर को पार कर गई और थ्रो इन इस समय मिलता हुआ सीएससी की टीम को। सीएससी की टीम आक्रमण करने की कोशिश, दाईं तरफ से मूव बनाने का प्रयास होता हुआ, लेकिन अभी तक एक सटीक मूव बनाने में कामयाब नहीं हुए। मध्यांतर के बाद के खेल का जहां तक सवाल है, दोनों ही टीमें इस फाइनल मुकाबले में फिलहाल एक एक गोल की बराबरी पर हैं। दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर सुब्रत मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला अंडर 17 जूनियर बॉयज वर्ग के लिए खेला जाता हुआ। इससे पहले अंडर 15 सब जूनियर और अंडर 17 जूनियर गर्ल्स के मुकाबले संपन्न हो चुके हैं। एक बार फिर से पेनल्टी बॉक्स के ऊपर गेंद को चिप करने की कोशिश, गेंद को वहां पर क्लियर किया सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने केरलम के, लेकिन गेंद को एक बार फिर से संभाला है मूसा ने अपने ही हाथ में मध्य रेखा से करीब करीब 7 या 8 गज अंदर की तरफ अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखने के साथ ही बैक पास के रूप में गेंद को निकाल दिया इस समय योहिम्बा के लिए। योहिम्बा पेनल्टी बॉक्स से करीब करीब 8-10 गज बाहर निकलकर गेंद को अपने पैरों में नियंत्रित करते हुए मूसा के लिए गेंद को एक बार फिर से निकाला। मूसा ने थ्रू पास के रूप में गेंद को निकाला है खूबसूरती के साथ मोहम्मद आजम के लिए। मोहम्मद आजम को एक बार फिर से गेंद मिली, अच्छा पास वहां पर पेनल्टी बॉक्स के ऊपर, खतरा हो सकता है। 9 नंबर की जर्सी में वहां पर गेंद संभाली थी उनका खिलाड़ी ने और उसके साथ ही बहुत ही बढ़िया गोल करने में कामयाब रहे मुंशीराम मेथई। मुंशीराम मेथई ने CIS के लिए दूसरा गोल दाग दिया है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम को इस फाइनल मुकाबले में 2-1 से आगे कर दिया है। क्या शानदार प्रदर्शन मोहम्मद आजम को देखने की समानांतर पास के रूप में उन्होंने वहां पर राज सिंह को निकाला गेंद को और राज सिंह ने वहां पर अपने पीछे की तरफ खड़े हुए खिलाड़ी की तरफ दिया था और उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस तरह से ये बेहतरीन गोल करने के साथ ही अब उन्हें 2-1 की बढ़त हासिल हो गई है। इसी बीच एक सब्स्टिट्यूशन होता हुआ, चेतन सिंह 16 नंबर की जर्सी में इस समय मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं। सलाम महेश के स्थान पर पहला परिवर्तन होता हुआ मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली CIS की टीम के द्वारा। प्रत्युष देव गेंद को संभाले हुए धीरे धीरे गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए पेनल्टी बॉक्स से बाहर की तरफ निकले अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देख रहे हैं, बल्कि वहां पर माफ कीजिएगा योहिम्बा थे जो कि CIS के टीम के गोल रक्षक हैं। गेंद को निकाला अपने साथी खिलाड़ी मूसा के लिए, मूसा एक बार फिर से पास निकालना चाहते थे वहां पर चेतन सिंह। चेतन सिंह का प्रदर्शन खासा अच्छा रहा है परिवर्तित खिलाड़ी के रूप में, अक्सर वो अब तक इस टूर्नामेंट में मैदान पर उतरते हुए नजर आए हैं। एक हैट्रिक के समेत कुल मिलाकर 6 गोल अब तक उन्होंने दागे हैं और कोच रंजीत बजाज की निश्चित रूप से उनसे काफी अपेक्षाएं होंगी कि आज भी कमे बेश उसी तरह का वो प्रदर्शन करें। दूर वाले छोर पर क्रॉस पेनल्टी बॉक्स के अंदर, हेड द्वारा गेंद को गोल में डालने की कोशिश वहां पर जरूर की थी लेकिन गेंद को ठीक तरह से नियंत्रित नहीं कर पाए थे इस अवसर पर मोहम्मद आजम खान। मोहम्मद आजम खान बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए, पहले हाफ में भी उन्होंने खासा अच्छा प्रदर्शन किया था, बढ़िया सटीक पासिंग का मुजाहरा इस समय होता हुआ CIS की टीम के द्वारा। CIS की टीम के खिलाड़ी दूसरे हाफ में बेहतर तालमेल के साथ आक्रामक मुद्रा में इस समय नजर आ रहे हैं और हो भी क्यों ना, एक शानदार टीम है, इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन उनका रहा है। इस मैच से पहले कुल मिलाकर 41 गोल उन्होंने दागे हैं। प्रत्याक्रमण हालांकि इस समय होता हुआ वहां पर केरलम की टीम की तरफ से, लेकिन सुरक्षा पंक्ति पूरी तरह से चाक चौबंद, गेंद को छीना, एक लंबा शॉट हवा में तैरता हुआ पहुंच रहा है इस समय प्रत्युष देव के पास जो कि गोल रक्षक हैं केरलम की टीम के। गेंद को उन्होंने संभाला, अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देख रहे हैं, एक लंबा शॉट वॉली शॉट लगाकर गेंद को पहुंचाया था उन्होंने CIS के हाफ में, लेकिन मूसा ने वहां पर गेंद को क्लियर किया। CIS के खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हुए, लेकिन गेंद वहां पर छिटके, गेंद को अपने कब्जे में करने का कोशिश जरूर किया था वहां पर अद्वैत ने, लेकिन गेंद उनसे लगती हुई अंततः हमारे नजदीक वाली टच रेखा से बाहर चली गई और थ्रो इन इस समय CIS की टीम को। लंबा थ्रो इन 7 नंबर की जर्सी में मोहम्मद आजम को देना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से अवसर बन चुका है इसी बीच CIS की टीम के लिए।

0: इस थ्रोइन का। आप मध्यांतर के बिल्कुल मध्य रेखा के बिल्कुल नजदीक इस समय थ्रोइन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं वहां पर सीआईसी की टीम के खिलाड़ी। थ्रोइन के बाद वहां पर मोहम्मद आजम की कोशिश इस बार नाकामी साबित होती हुई, लेकिन फिर से गेंद को संभालने में कामयाबी जरूर हासिल कर ली है वहां पर राज सिंह ने, लेकिन राज सिंह से गेंद को छीना वहां पर और राइट फुल बैक के स्थान पर खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर कर दिया केरलम की टीम के राइट फुल बैक ने, और इस तरह से जो खतरा उनके पेनल्टी बॉक्स के ऊपर मंडरा रहा था उसको टालने में वो कामयाब रहे। लेकिन प्रत्याक्रमण पर दूर वाले छोर से एक बार फिर से तैयार बहुत तेजी के साथ दाईं तरफ से आक्रमण करने की कोशिश में 10 नंबर की जर्सी में योनबा सिंह पूरी तरह से टाइम फ्लैक की एक बागडोर मानो संभाले हुए हैं। जब भी गेंद उनके पास आती है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं गेंद को लेकर, खासा अच्छा नियंत्रण है गेंद पर उनका जिसकी वजह से ड्रिबल करने में वो कामयाब रहते हैं। फ्लैंक बदलने के साथ ही गेंद हमारे नजदीक वाले छोर पर मोहम्मद आजम के पास गेंद, कप्तान के लिए गेंद को निकाला सैलेक्स के पास, गेंद इस समय संभाले हुए एक बार फिर से सैलेक्स, लेकिन वहां पर अपने साथी खिलाड़ी की तरफ गेंद को निकालना चाहते थे चेतन तिवारी के लिए, लेकिन चेतन तिवारी काफी दूर थे और प्रत्युष देव ने वहां पर आसानी के साथ गेंद को क्लियर कर।
1: So Vinir Basait lead 2-1 as ball is in the position with the yellow jersey footballer, and here is the striker from Minerva, Johanva Singh, who's been very impressive, and a foul has been called by the referee, and all of this action is happening in the penalty area where Johanva Singh had got the ball, but the foul has been accepted and looks like there's is another opportunity for Minerva to score the goal. Penalty has been given, in fact they were asking for it, a referee is still contesting that particular decision along with the players. So yes, the penalty has been awarded, Ashish, and looks like that when the penalty happens, all of this is a beautiful spectacle for all the audience out here. So referee has agreed to the contest, the argument that the players were making, that yes, the foul was committed in the penalty area, and now here's another opportunity for Minerva Public School to go 3-0 up. Things are being set, referee ensuring that the players are standing outside the permitted line, and the striker trying to get his focus and concentration. The football at the penalty spot, and this has been hit to the left of the goalkeeper, and Minerva has been able to bag the third goal as the audience roars to cheer their team. Congratulations Minerva for converting that penalty kick into the third goal.
0: मोहम्मद आजम खान ने इस बार कोई चूक नहीं की, और हमें आपने देखा कि किस अंदाज में वो दौड़ करके अपने टीम के प्रशिक्षक के पास पहुंचे रंजीत बदार वहां पर अपने घुटनों पर झुके, उन्होंने अपना पैर उनके घुटनों पर रखा और उन्होंने कहा ये गोल्डन बूट है आपका। तो निश्चित रूप से 3-1 की एक बढ़त यहाँ पर मिल चुकी है, और इस तरह के जो मंजर होते हैं, इस तरह की जो हौसला अफजाई होती है खिलाड़ी की अपने प्रशिक्षक के द्वारा, वो निश्चित रूप से किसी भी खिलाड़ी को बरसों बरस याद रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तमाम दर्शक बैठे हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी मौजूद हैं, उनके लिए इस तरह के मंजर जो होते हैं, इस तरह के दृश्य, वो काफ़ी समय तक उनके जहन में कैद होकर रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से खेल के मैदान पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आपका प्रदर्शन अच्छा है तो आपकी हर कोई तारीफ करेगा।
1: Absolutely, I think a proud moment there for Ranjit Bajaj, the coach for Minerva Public School CISC, and even though he was happy to have that third goal coming in his kitty, remember that has happened in the 11th minute of the second half, which means there is another 24 minutes play left, and sports teaches you not to be complacent, so he would encourage his team to build up on this lead and ensure that they don't concede the goal as well. Right now the ball is with the Keralam side as they give a huge aerial pass. It goes behind the goal line, and it's pretty safe. So the ball from outside, from the audience, will be given back to the goalkeeper of Minerva, K. Johanva, who's also been very good today. He's just conceded one goal. Otherwise, his defense has also been very good. And Johanva is passing that ball

0: Saka, but looks like he's coming out and there'll be a substitution. So in comes the substitute fielder as the physio will ensure that the player is given adequate medical attention. Injury is also part of the game, and it teaches you, sports teaches you how to be resilient, not to give up. And we've seen things changing pretty fast in the last quarter. Whenever we talk about the last 5 minutes, 10 minutes, that is where the real endurance is tested, Ashish.
1: बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अमित. और वहाँ पर तौफीक इंजर्ड हुए थे, MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल खिरलम के खिलाड़ी. इस समय वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वापस उन्हें अनुमति मिले मैदान में उतरने की. फिलहाल आक्रमण CIC टीम की तरफ से होता हुआ, सैलेक्स के पास गेंद थी जो कि टीम के कप्तान है. समानांतर पास के रूप में दूर वाले छोर की तरफ गेंद को सरका दिया है. पुनशिबा के पास इस समय गेंद है. पुनशिबा मैतेई ने बैक पास के रूप में गेंद को निकाला है. इस समय चेंगकिन गानबा के लिए. चेंगकिन गानबा ने एक बार फिर से सैलेक्स को बढ़ा दिया है गेंद, और वहां पर मध्य रेखा के नजदीक गेंद को अपने नियंत्रण में करने के साथ ही गेंद को बढ़ा दिया था मूसा के लिए. मूसा का वहां पर एरियल पास, फॉरवर्ड पास, लेकिन दिशा से दूर. गेंद हमारे टच रेखा को पार करती हुई थ्रोइंग इस समय केरलम की टीम के लिए. हेड द्वारा गेंद को क्लियर किया. मूसा ने एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ इस समय चेतन सिंह गेंद को संभाले हुए समानांतर पास के रूप में गेंद को निकाला वहां पर, लेकिन बहुत तेजी के साथ गेंद पर अपना नियंत्रण करने के लिए दौड़े थे अमर अजीम, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली. गेंद अभी भी कब्जे में है वहां पर CIC टीम के खिलाड़ियों के पास. खेल इस समय चलता हुआ केरलम के हाफ में. बैक पास के रूप में हमारे नजदीक वाले छोर पर इस समय मूसा के पास गेंद. मध्य रेखा के करीब करीब एक गज अंदर से एक लंबा एरियल पास तिरछा बिल्कुल दूर वाले छोर पर यानबा के लिए. देखना यह है कि क्या वो ड्रिबल करते हुए गेंद को अपने नियंत्रण में करने में कामयाब हो पाते हैं. अंततः उन्होंने गेंद को अपने नियंत्रण में किया और पास के रूप में अपने साथी खिलाड़ी को बताया, और पेनल्टी बॉक्स के ठीक ऊपर से एक राइट शूटर जिसे आसानी से रोकने में कामयाब रहे वहां पर प्रत्युष देव. 3-1 की एक महत्वपूर्ण बढ़त अभी भी हासिल है इस फाइनल मुकाबले में. CIC टीम को मिनर्वा पब्लिक स्कूल, जो कि मोहाली की है, जो कि पीले रंग की जर्सियों में खेल रही है, केरलम की टीम के खिलाफ. दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर अंडर 17 जूनियर बॉयज का यह मुकाबला, फाइनल मुकाबला चलता हुआ सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतर्गत 65वां संस्करण, उसका यह फाइनल मुकाबला. और क्या शानदार फुटबॉल देखने को मिली है आज दोनों ही टीमों की तरफ से. हालांकि आक्रमण करने में कहीं ना कहीं बाजी मारी है, और गोल जो हैं वो भी ज़्यादा दागने में अब तक कामयाब रही है CSA की टीम. फिलहाल केरलम के हाथ में खेल चलता हुआ, गेंद को संभाले हुए वहां पर मोहम्मद फाइजान ने गेंद को बढ़ाया था अपने साथी खिलाड़ी की तरफ एरियल बॉल के रूप में, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा उनको नहीं. और जिस तरह से वहां पर इस समय बाधा पहुंचाई 15 नंबर की जर्सी में एडविज ने CIC के खिलाड़ी को, उसके परिणाम स्वरूप ये फाउल और फ्री किक मिलता हुआ इस समय CIC की टीम को. एक और परिवर्तन CIC की टीम की तरफ से, 2 नंबर की जर्सी में चेतन तिवारी मैदान से बाहर जा चुके हैं, और उनके स्थान पर अब मैदान में प्रवेश किया है 12 नंबर के रोकाश अतुम. तो रोकाश अतुम इस समय बीच मैदान पर. दूसरा सब्स्टिट्यूशन या परिवर्तन होता हुआ CIC की टीम की तरफ से. 6 नंबर की जर्सी में इस समय छोने हुईड्रॉम स्टॉपर फुलबैक के स्थान पर पहुंच चुके हैं, और बहुत तेजी के साथ वो शफल करते हैं मध्य पंक्ति और सुरक्षा पंक्ति में, और उनका खेल देखते ही बनता है. जिनको इस समय संभाले हुए चिंखेन गांभा, गोल रक्षक यूएनबा के लिए गेंद को निकाला जो कि पेनल्टी बॉक्स से करीब करीब 10-12 गज बाहर की तरफ है. गेंद को संभाले हुए एक लंबा एरियल पास हमारे नजदीक वाले छोर पर. हेड द्वारा गेंद को क्लियर करने की कोशिश, परिणाम स्वरूप गेंद टच रेखा से बाहर और थ्रो इन इस समय मिलता हुआ CIC टीम को. रुकोश अतोम तैयार वहां पर थ्रो इन लेने के लिए, लेकिन वहां पर सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने इस अवसर पर गेंद को आसानी के साथ क्लियर कर दिया. प्रत्याक्रमण का मौका वहां पर 9 नंबर की जर्सी में. खतरा हो सकता है बहुत तेजी के साथ इस समय दौड़ते हुए.

0: रक्षक की तारीफ करनी होगी एक बार फिर से। एक अच्छा प्रयास था तौफीक का, मौका था, हालांकि अकेले थे, कोई साथी खिलाड़ी आसपास मौजूद नहीं था। गेंद को लेकर आगे बढ़ने की उनकी कोशिश अंततः फलीभूत नहीं उनकी टीम के लिए गोल के रूप में। 1-3 से अभी भी पिछड़ी हुई है केरलम की टीम।
1: Well, absolutely spectacular effort there, and we have to congratulate Taufeeq, who's been the leading striker for the Keralam side throughout the tournament, having scored 8 goals. And the way he swiftly bounced on the ball from the midfield, ran with the ball for about 50 meters, and he only had goalkeeper to defend there. So one thought maybe he'll get the better of the goalkeeper of Minerva Public School, Yohimba. But maybe he could have gone a little more closer to the goalkeeper. There was still a distance, but he tried to take a shot at the goal, which the goalkeeper had the hands onto the ball, which ensured it got deflected from the right side. So good opportunity going in vain, but still Taufeeq there, the striker for Keralam, creating an opportunity for his side. Meanwhile, the play has been stopped, as we see the physio carrying a stretcher. As one of the players of Minerva Public School, CISCE, lies on the ground as he is being administered medical attention by the physio. Let's see whether he can walk on his own out of the ground, or he'll be put on the stretcher. This is not a sight that we would like to see, but sports always comes with injuries as well. This is where it tests your endurance and patience, and we sincerely hope it's not a serious injury. Meanwhile, the other players are grabbing a little bit of water, although the breeze here at Dr. Ambedkar Stadium in New Delhi has picked up. It's become far more favorable, far more conducive to play sport. We've got these young school students who are sitting with great enthusiasm. 23 minutes into the second half, and this stoppage time will certainly be added, the injury time, to the second half of 35 minutes. And the story so far has been that this is the grand finale of 65th edition of Subrutho Cup football tournament. It's an international tournament where the idea is to promote football at the grassroots level. And it happens in 3 categories, under 17 boys, and we're looking at the finals right now. Under 17 girls, that has already happened, and under 15 boys as well. So West Bengal, Jharkhand have won the trophies in the other 2 categories. And we await as to who will win here. Minerva looks favorites to win, which will be their first title in the under 17 boys. Meanwhile, one of the players has been stretchered out off the field, and referee trying to get the other players in order to resume the action. So the referee, Naik Bhaskar Tamang, indicates again the restart of the play as the player from Keralam hits an aerial pass, and it goes at least 50 meters behind the goalpost of the Minerva side. And the moment the ball goes into the audience, Ashish, that brings a roar, and we've seen that the audience has another competition among themselves as to who will catch the football and return it back to the players.
0: जी बिल्कुल, एक और परिवर्तन यहाँ पर मजबूरी में करना पड़ा है प्रशिक्षक रंजीत बजाज को, ये देखते हुए कि मूसा आशिक वहाँ पर चोटिल हो गए थे और उनके स्थान पर अब सामते को 13 नंबर की जर्सी में मैदान पर उतारा है। फिलहाल 3-1 की बढ़त है SCIC की टीम के पास, और दूसरे हाफ का लगभग 26 मिनट का खेल अब तक हो चुका है और 3-1 की बढ़त इस समय हासिल है CISA की टीम के लिए। दाएं तरफ से आक्रमण करने की कोशिश सेलेक्स के पास, जो कि टीम के कप्तान हैं। गेंद उनके पास, यूएनबा के लिए गेंद निकाली, दाएं छोर पे गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए ड्रिबल किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, एक खिलाड़ी को चकाया, अच्छा पास, ठीक पेनल्टी बॉक्स के ऊपर समानांतर पास दिया था और एक ताकतवर शॉट, लेकिन इस बार गोल पोस्ट से काफी ऊपर बाहर निकल गया। थोड़ा नीचे होता तो परीक्षा निश्चित रूप से वहां पर प्रत्युष देव की हो सकती थी और हो सकता था कि चौथा गोल भी वहां पर CISA की टीम को मिल जाता, लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाए, काफी ऊंचा शॉट खेल बैठे। हालांकि काफी ताकतवर शॉट था, लेकिन उसका फायदा वहां पर कोई नहीं मिला CISA की टीम। मैदान के बीचों बीच इस समय खेल चलता हुआ, प्रत्याक्रमण करने की कोशिश वहां पर जरूर हो रही है केरलम की टीम के खिलाड़ियों की तरफ से, लेकिन उसका कोई लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिला है। दूर वाले छोर पर इस समय टॉफिक तैयार हैं, थ्रो इन वहां पर, देखना यह है कि क्या इस समय उसका कोई फायदा उठा पाते हैं या फिर नहीं। दुधिया प्रकाश में दिल्ली के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर यह मुकाबला इस समय चलता हुआ, फाइनल मुकाबला सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट।

0: टूर्नामेंट का अंडर 17 जूनियर बॉयज के लिए। और बहुत बढ़िया वहां पर नियंत्रण और बहुत बढ़िया कोशिश इस अवसर पर कहना होगा एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के खिलाड़ियों की तरफ से। केरलम की टीम के खिलाड़ी को जैसे ही वहां पर गेंद मिली थी थोड़ा सा वहां पर वो पलटे और उसके बाद गेंद को उन्होंने नियंत्रित करने के साथ ही लेफ्ट फुटर जमाया था, लेकिन उसका वहां पर कोई फायदा उनको नहीं मिलता। अभी भी एक टीम से पिछड़ी हुई है केरलम की टीम इस मुकाबले में। समय बहुत तेजी के साथ खिसकता हुआ निकलता हुआ इस फाइनल मुकाबले में, पूरी तरह से इस मुकाबले में अब तक बढ़त और अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रही है मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली सीआईसी की टीम। और उनके प्रशिक्षक रंजीत बजाज लगातार अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तीन परिवर्तन अब तक रंजीत बजाज कर चुके हैं और ये तीनों ही परिवर्तन खेल के दूसरे हाफ में किए गए हैं उनके द्वारा, जबकि केरलम की टीम की तरफ से अब तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो कहना होगा अमित, एक शानदार फुटबॉल देखने को आज मिली है। हालांकि फुटबॉल जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि चोट लगना कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है। अब से थोड़ी देर पहले मूसा आशिक चोटिल होकर मैदान से बाहर निकले थे और उनके स्थान पर सामते ने जगह ली थी, और लगातार उसके बाद जो प्रक्रिया है आक्रमण करने की वो जारी है। और कहीं ना कहीं केरलम की टीम इस बात का फायदा उठाना चाहती है कि मूसा आशिक जो हैं वो काफ़ी एक मजबूत स्तंभ हैं उनकी सुरक्षा पंक्ति में, और अब उनकी अनुपस्थिति में कहीं ना कहीं उसका लाभ उठाने की कोशिश वो करना चाहते हैं। फिलहाल ये फ्लैग किक मिलता हुआ, पहला फ्लैग किक केरलम की टीम के पक्ष में, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। हालांकि थ्रो इन जरूर वहां पर मिल चुका है केरलम की टीम।
1: So Kerala team getting throw in there, and their captain G2V, and that's been a nice shot, and Kerala scores another goal there. So it's 3-2 now, and Kerala team will be absolutely happy. The throw in has been converted into a goal. Kerala was trying to make inroads into the other side. The audience cheers, the crackers go into the sky, and even as we enter the last 7 minutes of this second half, things are getting exciting here. So many would have thought Minerva probably is going to win this under 17 boys easily. Keralam side is saying, hold on, we are here to compete too. So a nice second goal being scored there, the throw in, and that was converted into a goal by a combination of G2B, the captain, Taufik, and Advait, who've been brilliant in the entire tournament. So it's 3-2 in the second half, as we've got the ball being thrown in from the Keralam right back player, and the Minerva fielder, the striker, has been able to successfully intercept, and he hits a long shot, and that was on top of the goal post.
0: तो 2-3 से हालांकि समय केरलम की टीम में पिछड़ी हुई है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं ताजा तरीन एशियन गेम्स की अपडेट के लिए आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. दोस्तों मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शाबाब अनवर, and the best news of the day is coming and has come from the world of athletics. जी हाँ, the biggest news of the day, should I be saying, is that India went on to win the silver medal in 4x400 meter relay mixed event. The quartet of Puvamama Raju, Vishal Thinarasu, Vithya Ramraj and Manu TS, who were representing India, made sure that India finished with that coveted silver. At one point it looked that we might have to suffice with the bronze, but we were able to get that coveted silver for us. And also let me just inform all our listeners over here that India have already won the gold in 2018 and also the silver in 2022, and now we've been able to keep make sure that we maintain that silver once again into the 4x200

0: 400 meter relay mixed event Shabab.
1: Yeah, bilkul. Aur ab wo samay aa gaya hai shayad 5va 6va din ke baad ki lagatar jo bhartiya athlete hain wo apna dabdaba barqarar rakhenge sabhi khelon mein. Kal kabaddi ka दोनों सेमीफाइनल है, लगभग पदक पक्का कर लिया है दोनों ही टीमों में. और आप जानती हैं कि किस प्रकार से अपने स्वर्ण पदक की रक्षा भारत को करनी है कबड्डी के खेल में. जापान को जिस तरह से अपने अंतिम मैच में हराया है, 50-25 का अंतर था, तो कोई भी मुकाबला ऐसा नहीं हुआ है, अगर एक मुकाबले को शायद हम छोड़ दें, जिसमें ऐसा लगा हो कि भारतीय कबड्डी खिलाड़ी चाहे पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, कहीं पर कांटे की टक्कर हुई हो. बहुत ही आराम के साथ हॉकी में भी और कबड्डी में भी. हॉकी में देखिए, कोरिया से कहा जा रहा था कि शायद कोरिया की टीम जो है थोड़ी सी मजबूत साबित हो, लेकिन कोरिया को हमारी भारतीय हॉकी टीम ने आसानी से 8-2 से पराजित किया. तो जिन खेलों में हमारे पास अच्छी शक्ति है, उधर बहुत अच्छे तरीके से चीजें जा रही हैं.
0: राइट, आई विल गिव अ क्विक अपडेट ऑन ऑल द रिमेनिंग एथलेटिक इवेंट्स आल्सो दैट हैपेंड टुडे, वेयर सीमा कुमारी डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट एथलेटिक मेडल ऑफ एशियन गेम्स 2026 बाय विनिंग द ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल टुडे. सीमा फिनिश्ड विद द टाइम ऑफ 32 minutes 50.05 seconds एंड बैग्ड द नेशंस फर्स्ट मेडल इन द इवेंट इन 16 years. जी हाँ, 16 साल में पहली बार हमें ये पदक मिला है. अर्लियर आशा लांगो नैरली मिस्ड आउट ऑन अ हिस्टोरिक फर्स्ट वुमेन्स ट्रिपल जंप मेडल. शी फिनिश्ड विद द सेम बेस्ट थ्रो एज द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बट मिस्ड आउट ड्यू टू अ वर्स सेकेंड बेस्ट अटेम्प्ट. वहीं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 मीटर सेमीफाइनल्स विद टाइमिंग्स ऑफ 10.38 seconds एंड 10.36 seconds रिस्पेक्टिवली. हेप्टाथलॉन में पूजा और अनामिका अनीश are not in the medal positions with 3 more events to go. Kal aur zyada clear ho jayega ki Bharat ki standing kis prakar rahegi medal table mein aur khaas taur se athletics ke andar. Rowing ke andar bhi aapko quick update de de, the day started off with a medal first of all that came from the men's double sculls final, jiske andar humne dekha kis tarah se Satman Singh aur Salman Khan ne aaj teesre sthan par men's double sculls mein with a timing of 6 minutes 13.25 seconds ke saath Bharat ko aaj ke din ki early morning shuruaat mein bronze medal दिलवाया था. शबाब,
1: जी बिल्कुल, शुरुआत तो आज सुबह में अच्छी रही. पहले सिल्वर सबसे पहले, फिर ब्रॉन्ज, और उसके बाद फिर थोड़ा सा दिन में ऐसा लगा था कि सन्नाटा सा हो गया है, लेकिन अंतिम समय पर यह सन्नाटा पूरी तरह से चीरते हुए एक तरह से भारतीय एथलीटों ने फिर से जगा दिया है भारतीय खेल फैंस को. एक
0: जी सन्नाटा इतना तो हुआ नहीं था, क्योंकि यस, एक साइड पे हमने देखा रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान, कैसे उन्होंने हमें ब्रॉन्ज दिलाया. उसी के साथ साथ वुशु ने भी आज सबसे बड़ी खबर दिन की हमें दी थी, जहां रोशिबिना देवी ने वुमेन 60 केजी फाइनल्स में आज भारत को सिल्वर मेडल दिलवा दिया. यस, वंस अगेन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ दैट, शी दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स दैट हैपेंड बिकॉज शी वॉज एबल टू गेट अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स. आपको बता दें, ब्रॉन्ज उन्होंने 2018 में कमाया था, उसके बाद 2022 में भी उनको सिल्वर मेडल से नवाजा गया था, और अब उन्होंने इस साल के एशियन गेम

0: 9:30 से अपने श्रोताओं के साथ आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे, ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 एवरी आवर. फॉर नाउ इट इज शबाब अनवर एंड मी साक्षी मांडवाल सेइंग गुड बाय एंड थैंक यू टू ऑल आवर लिसनर्स.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: మీరు ఇంతవరకు సినిమా పాట విన్నారు. ఇదే ప్రసారంలో 9:30 మరికొన్ని తెలుగు సినిమా పాటలు వినవచ్చు. ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం, సమయం 8:45 కావస్తుంది. ఇప్పుడు సమాచార్ సంధ్య, హిందీలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి వింటారు.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है. सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला. सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया. ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी. सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73581 पर हुआ बंद. जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते. सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता. डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है. उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है. श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही. श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं. श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है. आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी. और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है. और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली.
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जी

0: जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
3: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
4: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये

0: को साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
1: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
2: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
0: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे एसआईआर आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
5: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई, पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
0: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।

0: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
1: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल्ड लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
0: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000-meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
4: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
3: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
4: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी और इस दायित्व को निभाने

0: के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
0: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: During the interaction, Sevayatri shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and the security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic customs duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Mission Karma Yogi.
2: Mission Karma Yogi was launched in September 2020, envisioning a future-ready civil service rooted in India ethos with a global perspective. Mission Karma Yogi is aimed at strengthening the capacity and skills of government officials and making civil services more citizen-centric. The iGOT platform under Mission Karma Yogi has over 1.70 crore registered users and it hosts over 6,500 courses across domain, functional and behavioral competencies. It also includes more than 200 courses on AI and emerging technologies designed to equip government officials with essential digital knowledge and skills. Addressing an event, Prime Minister Narendra Modi said that the objective of Mission Karma Yogi is to make the government officials citizen-centric.
3: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे। टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है।
2: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एस राधा चौहान सेड दैट मिशन कर्मयोगी वाज एस्टेब्लिश्ड विद द विजन ऑफ अचीविंग द एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ विकसित भारत 2047 इन अ टाइमली एंड हाई क्वालिटी मैनर।
4: विकसित भारत का जो एक बहुत एस्पिरेशनल हमारे लक्ष्य है।
5: द एम्बिशियस गोल ऑफ विकसित भारत इज टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम एंड विद क्वालिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आवर पब्लिक सर्वेंट्स मस्ट इंश्योर द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी सर्विसेज टू सिटीजन्स। दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो टू एवरी स्टेट एंड एवरी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम ग्रास रूट्स वर्कर्स टू सीनियर सेक्रेटरीज एंड पॉलिसी मेकर्स। कैपेसिटी बिल्डिंग इज नीडेड अक्रॉस द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। विद दिस विजन मिशन कर्मयोगी वॉज established 5 years ago.
4: 5 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया।
2: All central government employees and officers of the All India Service

0: కార్యక్రమంలో చివరిగా మీరు విన్న ఈ పాట ఇంటిగుట్టు చిత్రం నుంచి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం పీసుశీల పాడిన పాట విన్నారు. సంగీతం చక్రవర్తి. ఇదే ప్రసారంలో 10:20 ఆపాత మధురాలు పాత చిత్రగీతాలు వినవచ్చు. ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం. సమయం 10:00 కావస్తుంది. ఇరవయవ ఆసియన్ గేమ్స్ 2026 జపాన్లో జరుగుతున్న ఈ ఆటలపై డైలీ అప్డేట్స్ వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచీ నగోయా. The motto for the Indian contingent at the 2026 Asian Games has been dedication, determination and discipline. And today, we saw all these qualities on display in Aichi Nagoya. Hello and welcome to our special daily Asian Games recap show on Akashwani. My name is Abhinav Punchi. Let's jump straight into the headlines. The Indian athletes have added 5 medals to their Asian Games tally on Thursday to take the overall total to 17 medals. The Indian team bagged silver in the 4x400m mixed relay with an outstanding performance from the athletes. Before that silver, a superb 10,000m run from Seema Kumari ensured a bronze for India after 16 years in this event. The day started with rowers Sattam Singh and Salman Khan claiming a bronze medal in the men's double sculls event. A.S. Naruka and Parinas Dhalewal added a skeet shooting bronze medal in the afternoon, while Roshabina Devi claimed a silver in Wushu after losing the final to Zhang Xiao of China in the women's 60kg Sanda event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got 2 medals today. Prerna Sharma has more.
2: Bhartiya athletes dikhane lage rang, ek ke baad ek medal, aur ab athletics mein gold ka intezaar. Indian athletics ka medal account ab khul chuka hai, aur track and field se lagataar achhi khabrein samne aa rahi hain. Silver aur bronze dono medal Bharat ki jholi mein aa chuke hain. Ab intezaar hai us sunahre pal ka jab podium par gold ke saath Bhartiya tiranga sabse upar lehraye. Shuruaat karte hain mixed 4x400 मीटर रिले से, जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. पूर्व मराजू विशाल थेनारसु, विद्याराम राज और मनु टीएस के क्वार्टरेट ने 3:14.46 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया. इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में, जहां विद्याराम राज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया. बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाओ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा. अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला. महिलाओं की 10,000m रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया. ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है. साथ ही महिलाओं की 10,000m में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है. 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था. 16 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है. अब रुक करते हैं मेंस 100m की ओर, जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया. उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे. तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया. वहीं हीट 4 में गुरविंदर

0: सिंह ने 10.38 सेकंड्स का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। यानी अब मेंस 100 मीटर में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं। अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की, जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया। अपने सिक्स्थ और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59 मीटर की जंप लगाई और फोर्थ पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया, यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया। इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रहीं। अब रुक करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं। आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की। अनामिका ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.80 सेकंड में पूरी कर 868 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.74 मीटर की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स, शॉट पुट में 11.15 मीटर के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 25.96 सेकंड में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए। इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहे। वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.61 सेकंड में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71 मीटर की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44 मीटर थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 26.27 सेकंड में पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए। पूजा का कुल जोड़ 3159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा। भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी। तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है। सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
2: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है, इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: It was a good day for Indian rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Satnam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Satnam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Balraj Pawar missed out on a bronze medal in the men's singles sculls final. In the 2000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jakar Khan finished fifth in the men's quadruple sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur, Ali Nanto, Tendeliti Habujam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu Arena today, and Sakshi Manwal has more.
3: Wushu icon Rushabena Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's Sanda 60kg category after a hard-fought battle against China's Xiao Zhang. Rushabena gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Rushabena Devi has become a 3-time Asian Games medalist, adding to her 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.

0: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its third consecutive win in the group stages of the Asian Games 2026 men's hockey tournament with an 8-2 win over South Korea. Dilpreet Singh and Abhishek completed a brace each as India extended its lead atop the Group A standings. Sukhjeet Singh, Harmanpreet Singh, Rajinder Singh and Shilanan Lakra were the other scorers for Craig Fulton's side. Kim Jao and Kim Yong-Buk found the back of the net for the South Koreans. Our boxers were in action at Aichi Nagoya. Shabab Anwar has more.
1: मुक्केबाजी में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा और कुछ हद तक दिल तोड़ने वाला भी. साक्षी चौधरी मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गई हैं. उन्हें कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बाली कोबोकुवा ने 3-2 से हरा दिया. साक्षी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आयरा वेलेगोस को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला खेले बगैर जीत गई. कजाकिस्तान की मालिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया. अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की नवबखोर खामिदोवा से होगा. मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला जब भारत का एक मुक्केबाज सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा. सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके घुटने में चोट लग गई. इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े. सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा. और इराक के अली कासिम को वॉकओवर के द्वारा अगले दौर यानी के क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई.
0: They were successful for India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
2: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Luxury of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chautrani faced a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiwa. The final score of the match was 3-2 in favor of India's Veer Chautrani, the scoreline being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuang Wai In. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favor to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuang Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in the quarterfinals. Joshna Chinnappa and V. Senthilkumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favor.
0: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
3: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है. चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीत कर ग्रुप स्टेज का समापन किया. यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं. अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा. दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की. आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया. इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा.
0: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
2: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shrija Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style.

0: cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdin Batmuk and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shin. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
1: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
2: महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार के साथ इस स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल 4 में 5 मुकाबले खेले, 2 जीत के साथ वह पूल 4 में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता है। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल 2 में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, जबकि 2 में उन्हें हार मिली। तीसरे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हायंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
0: India's Benedictine Beniston finished 5th in the Heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4x100-meter freestyle relay heats, Benedictine Beniston, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team race. They recorded a time of 3 minutes 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
1: It was a tough day for India in Kano. Sakshi Manwal has more.
0: India faced a disappointing day in canoe sprint with all 4 entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500-meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak 4 finished 7th in the 500-meter finals with the quartet of Nayocha Singh Laitonjem, Varinder Singh, Oynam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500-meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi-final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out in the women's canoe single 200-meter final after finishing 4th in her 5-boat semi-final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.
1: Let's now hear from the latest from what happened in the esports arena with Prerna Sharma.
2: Esports एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है। भारत के लिए esports से अच्छी खबर आई है। भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने esports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है।
1: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
2: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशु, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए। अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है। जापान 20 गोल्ड, 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर स्थान पर है। दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ 15वें स्थान पर बना हुआ है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास